नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 वार शुक्रवार का दिन है, साथ ही हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज, यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारेशर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में। मेरे साथ होगी हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान की ओर, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00। फिर इसी क्रम में रूबरू करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर लिखिए, हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
5: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: જેમ કે અંજલિબોન ગીત ત્યાં આવ્યું પૂરું ને ફેરે આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું સ્વાગત કરો આપણે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ગીત થકી પહેલે આપે વિશે બતાડ્યું હતું ગાઉની અર્થવ્યવસ્થા મેં ખેતીની હું ભૂમિકા હે.
1: હવે તો મનીષા બોન અડા વિશે માતે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે હિમાંકી લાલજી, તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાતે મોરે કર આપણી વાતે.
0: હવે અંજલિ બોન
1: સર નમસ્કાર.
2: નમસ્કાર જી.
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું વાગર રેડિયો પરિવાર મેં.
2: જી ધન્યવાદ.
1: સર જૈસા કે આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ. તો આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ ગાંવ કી અર્થવ્યવસ્થા મેં ખેતી કી ભૂમિકા કો લેકર. જાનેંગે સર કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે કે ગાંવ કી અર્થવ્યવસ્થા મેં ખેતી કા ક્યા મહત્વ હૈ.
2: જી તો દેખિયે બહોત અચ્છા વિષય હૈ. તો દેખે હમારે ક્ષેત્ર મેં અધિકાંશ ગાંવ કી જો પહેચાન હૈ વો ઉનકી ખેતી ઓર કિસાન સે જુડી હોતી હૈ.
1: બિલકુલ.
2: ખેતી કેવલ અનાજ ઉગાને કા પ્રક્રિયા નહીં હૈ બલ્કિ અગર દેખા જાય તો ગાંવ કી આર્થિક વ્યવસ્થા, સામાજિક સંરચના, પોષણ ઓર આત્મનિર્ભરતા કા આધાર હૈ.
1: બિલકુલ.
2: એક સશક્ત ખેતી પ્રણાલી હૈ પૂરે ગાંવ મેં રોજગાર, ભોજન, આય કા આદાન પ્રદાન. ઇસીલિયે ગાંવ કી જો સમૃદ્ધિ જો સીધે તોર પર દેખે તો ખેતી પર નિર્ભર કરતી હૈ.
1: બિલકુલ.
2: આજ કે સમય મેં જબ ગ્રામીણ ક્ષેત્ર મેં કઈ ચુનૌતિયાં સામના કર રહે હૈ જૈસે બઢતી લાગત, જલ સંકટ, બાજાર કી નિર્ભરતા, ખેતી કી ભૂમિકા કો સમજના, તો અત્યધિક ઓર જો મજબૂત કરના અભી આવશ્યકતા હૈ વર્તમાન મેં.
1: બિલકુલ સર આપને સહી કહા. તો યહી અબ મેં જાનના ચાહુંગી કે આજીવિકા કે મુખ્ય સ્ત્રોત ક્યા હૈ.
2: દેખે અગર ગાંવ સ્તર પર હમ જબ સોચતે હૈ તો જૈસે હમ બાત કરતે હૈ કે હમારે ગાંવ કે અધિકાંશ પરિવાર હૈ વો ખેતી પર નિર્ભર હોતે હૈ.
1: બિલકુલ. ઓર
2: ખેતી ઉનકા જો મુખ્ય જો હૈ આજીવિકા કા કેન્દ્ર હોતી હૈ ઓર ઇસકે સાથ મેં જૈસે ખેતી મજદૂર હૈ, પશુપાલક હૈ, જો ઉત્પાદન હોતા હૈ ખેત મેં, જો ખેતી સે જુડે રોજગાર પાતે હૈ, મહિલાએ હૈ બીજ સંરક્ષણ કરતી હૈ, ખાદ કા નિર્માણ હોતા હૈ, પશુપાલન મેં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાના, તો એ સારી ચીજે હૈ હમારે જો ગાંવ કે આજીવિકા કે મુખ્ય સ્ત્રોત.
1: બિલકુલ સર આપને સહી કહા. યહી હમ દેખતે હૈ કે ખાદ્ય ઓર પોષણ સુરક્ષા કી જબ હમ બાત કરતે હૈ તો વો ભી ઇસકે માધ્યમ સે સુનિશ્ચિત હોતી હૈ. તો ઇસ બારે મેં આપકા ક્યા કહેના હૈ.
2: જી જબ ગાંવ કી અર્થવ્યવસ્થા કી બાત કરતે હૈ તો ખાદ્ય ઓર પોષણ સુરક્ષા એ હમારી બહોત મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત હૈ. તો ગાંવ મેં યદિ વિવિધ ફસલે ઉગાઈ જાતી હૈ જૈસે અનાજ હૈ, દાલે હૈ, મોટા અનાજ હૈ, સબ્જિયાં હૈ, ફલ હૈ, તો ઇસે ક્યા પરિવાર સ્તર કા જો પોષણ હૈ વો સુધરતા હૈ.
1: બિલકુલ.
2: ઓર ઇસકે સાથ મેં જો પારંપરિક ખેતી હૈ જૈસે હમ બાત કરતે હૈ પહેલે ભી હમ કરતે થે જૈસે મોટા અનાજ હૈ, કુરી, કોદરા, બટ્ટી, માલ, રાગી, મક્કા, જવાર, બાજરા, દાલે, હરી સબ્જિયાં, તો યે એક તો આપકો ઘર સ્તર પર ઉપલબ્ધ હોતી હૈ. ઇસકે સાથ સાથ મેં આપકે સ્વાસ્થ્ય લાભ હોતે હૈ ઓર ઇસમે આપકી પૈસે કી બચત હોતી હૈ.
1: જી જી.
2: इसलिए हमारे जो परिवार की अगर आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा भी अगर सुधार होता है या खुद का अपनाया हुआ हम खाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो गांव स्तर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है.
1: बिल्कुल सर आपने सही कहा. तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि स्थानीय बाजार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं.
2: देखिए वर्तमान में हमारे क्षेत्र में बहुत आवश्यक है कि हमारा जो स्थानीय बाजार है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए. जैसे कि आज से 20-25 साल पहले जब आप सोचेंगे तो हमारे हर गांव में हर ग्राम पंचायत पे हाट बाजार होते थे. तो हाट बाजारों में क्या था कि हमारी तो सब्जियां, फल, हमारे अनाज, हमारे मसाले, हमारी दालें होती थी और हम उनको वहां पे सेल करने जाते थे, बेचने जाते थे.
1: बिल्कुल.
2: तो बेचते तो एक तो क्या कि अपने जो खुद ने पकाया है वो शुद्ध आपको अच्छा पौष्टिक खाना है वो आप खरीद कर ले जाने वाले को दे रहे हो.
1: बिल्कुल.
2: दूसरा उससे आप पैसे से आपकी आय हो रही है. तो एक तो हमें वापस से वो परंपरा थी हमारे हाट बाजार की उसको अपनाना पड़ेगा ताकि हमारी बाजार की निर्भरता कम हो और हमारा जो लोकल मार्केट है वो मजबूत हो ताकि हम वहीं पे हमारी सारी चीजें बेच सके.
1: बिल्कुल.
2: इसके साथ में जैसे परिवहन के लिए भी हम बात करते हैं तो हमारे जैसे बैलगाड़ी थी, जैसे ऊंट गाड़ी हुआ करती थी, तो उससे क्या कि पहले हमारे आय का स्रोत था परिवार का.
1: बिल्कुल.
2: कि किसी किसान के नहीं है तो उसको चारा डालना है या फल सब्जियां ले जाना है, तो इस तरह के कार्य हैं जो पुराने तरीके से हमें करने की आवश्यकता है ताकि आपको ना पेट्रोल जलाना पड़े, ना डीजल जलाना पड़े और ना ही किराया देना पड़े.
1: बिल्कुल.
2: आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं.
1: बिल्कुल.
2: इसके साथ में जैसे हम बात करते हैं स्थानीय बाजार की, तो इसमें एक है कि हमारे गांव में जो है अलग अलग तरीके के आप कुछ नए आइडियाज अपना सकते हैं, जैसे कि कृषि वानिकी है, तो आप गांव स्तर पे अपनाएंगे तो दूसरे लोग भी आपके पास वो आएंगे सीखने या खरीदने जो भी चीजें होगी। तो इस तरह से आप जो है स्थानीय बाजार को बढ़ावा देकर हमारे हाट बाजार को और हमारी आर्थिक जो स्थिति है गांव की उसमें सुधार ला सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि पशुपालन और प्रकृति का संरक्षण इसके माध्यम से कैसे हो सकता है।
2: देखिए, जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव हमारे क्षेत्र का और हमारे देश की मजबूत आधार है, जो कि हम बात करते हैं कि आजीविका सहायक या पशुपालन की हम बात करते हैं। तो पशुपालन कई सदियों से हमारे करते आए हैं। जैसे हमारे क्षेत्र की बात करते हैं तो पशुपालन में मुर्गी पालन है
1: जी,
2: आपको बकरी पालन है, गाय है, जैसे भैंस है, तो ये सारे पशु हमारे यहाँ पाले जाते हैं। तो जैसे पशुपालन से एक तो आपको दूध मिलता है, तो आप उसको बेच सकते हैं, उससे आपकी आय होगी परिवार की। अगर गांव स्तर पर इसको हर परिवार अपना हो तो गांव स्तर की आय बढ़ेगी आपकी
1: जी। बिल्कुल।
2: इसी तरह आपको खेत के लिए खाद मिलता है, ताकि आपको बाजार से कोई खाद खरीदना ना पड़े, तो उससे भी आपकी जेब का पैसा खर्च नहीं होगा
1: जी जी।
2: इसके साथ ही अगर आपके पास अतिरिक्त गोबर खाद है तो आप बर्मी कंपोस्ट या उखेड़ा इस तरह की जो चीजें हैं बनाकर आप दूसरों को बेच सकते हैं
1: जी जी।
2: तो वहां से भी आप आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो अतिरिक्त आय है वो उस परिवार की और समुदाय की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत करने में सहायक होती है
1: जी जी।
2: इसके साथ में आप देखेंगे कि जैसे प्राकृतिक संसाधन है, तो जैसे हम बात कर रहे थे खाद की, तो उसमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, तो आपकी पैदावार अच्छी होगी
1: जी जी।
2: पैदावार अच्छी होगी तो जहाँ पे 2 क्विंटल था वहाँ 3 होगी, तो आपकी आय बढ़ेगी। इससे आपका जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी, कि हम जैसे देसी तरीके से हम बात करते हैं तो उसमें खाद और सबकी बात करते हैं, तो उससे आपका जल संरक्षण है
1: जी जी।
2: साथ में आपकी जैव विविधता बढ़ेगी, तो कि आपको अनेक प्रकार के फल सब्जियां और अनाज घर पे मिलेगा, तो आप बाजार से नहीं खरीदोगे
1: जी। बिल्कुल।
2: तो इस तरह से आप पे जो है आपकी आर्थिक आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि सर हम गांव की अर्थव्यवस्था में खेती के महत्व को जान पा रहे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने है।
2: देखिये, वर्तमान में चुनौती की बात करें हैं तो अगर खेती और किसान से जुड़ी ही बातें करते हैं तो आजकल हमारी खेती है वो घाटे का सौदा बनती जा रही है। जैसे लागत बढ़ रही है आपकी, मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि रासायनिकों ने धीरे धीरे हमारी जमीन को बंजर बना रहा है। तो इस तरह से इसी तरह आप देख सकते जल संकट है, कि हम जल का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, भूजल है वो नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है तो हमारी जो सिंचाई की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है
1: जी जी।
2: तो सिंचाई की समस्याएं बढ़ रही है, उत्पादन कम हो रहा है। अगर आप 5 पानी पिलाएंगे गेहूं को तो अच्छा पकेगा, अगर आपको 2 ही पानी की व्यवस्था है तो फिर आप उम्मीद से कम ही पकेगा।
1: बिल्कुल।
2: तो ये चीजें हैं। इसी तरह जैसे हमारा पारंपरिक बीज है उसका अभाव है, कि हम बीज संरक्षण की जो हमारी प्रथा थी उसको हम भूलते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो बीज संरक्षण भी हमारे लिए एक वो है कि हमें अगर आत्मनिर्भर बनना तो घर का बीज रखें, बाजार की निर्भरता कम करें
1: जी जी।
2: तो इस तरह की जो छोटी छोटी लागत है उससे भी ये एक तो दूर हो रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि जैसे हम बात करते हैं आज के समय में कि युवा है वो धीरे धीरे जो खेती से हटकर गांव से हटकर शहरों की तरफ प्लान कर रहे हैं
1: जी जी।
2: तो ये भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
1: बिल्कुल। तो सर समाधान क्या हो सकता है और आगे की दिशा में हमें किस तरीके से परिवर्तन लाने की जरूरत है?
2: देखिए, समाधान है कि पोषण आधारित खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें आप विविध फसलें उगाए, पोषण बाड़ी विकसित करें, मोटा अनाज जो है वो आप करने लगे, ताकि पोषण की सारी व्यवस्था वो आपके घर की हो, तो आपका पैसा खर्च ना हो। इसी के साथ में आप देखोगे कि जैसे जैविक और प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि परंपरागत खेती, तो उसको अपनाना जरूरी है, जिसमें हमारा खुद का गोबर

0: में इसके संवाद करे, बातचीत करे, तो हर चीज पर उनको थोड़ी जागरूकता आई, ताकि हम लोग साथ मिलकर जो जैसे हमारी परंपरागत प्रथाएं थी, जैसे हलमा, तो हलमा हमारे लिए समाज के लिए क्या था कि सब एकजुट होके ये काम हो गया आपका, किसी का खेत तालाब बनाना, किसी की मेड़ बांधना, ये निकट बनाना, तो ये प्रथाएं हैं जो हमको वापस से लाने की जरूरत है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: इसी तरह स्थानीय बाजार है हमारा, जैसे हमने पहले भी बात की कि हाट बाजार को आप बढ़ावा दें, ताकि आपकी जो चीजें हैं गांव में उपयोग हो, दूसरे लोग खाए लेकिन समुदाय के खाए, मार्केट में न जाए। अगर मार्केट में जाएगी तो आपको उसका मूल्य नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से ये अवगत करवाया है कि गांव की अर्थव्यवस्था में खेती का क्या महत्व है और किस तरीके से इसके सामने चुनौती आती है और समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सर, अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि खेती मजबूत होगी तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए आवश्यक है कि हमें पारंपरिक ज्ञान को अपनाना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और सामूहिक रूप से मिलकर इसका प्रयास करें।
1: बिल्कुल।
0: ताकि हमारे समुदाय की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो बेहतर बन सके।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद। मैं
1: भाईन बोनु जिम के अवडे आपणे वैश्विक मांगीलाल जी सर जुड़े तक हता ने एणाने माध्यम ते कि आपणे घणा आकानी वाते जाणी है कि हरते गांवनी अर्थव्यवस्था ने वधावा में खेतीनी भूमिका है। आ वाते मनीषा बोन आपणे बल्ले घणी जरूरी है, केम कि आ सब चीजे जे है ये आपणे जीवन तक ही जुड़ी तकी रहे हैं। एवं में आ सब जानकारी अगर आपणे होगा तो आपणे देखेंगा कि आपणे जीवन नी घणा आकानी जे परेशानी है दूर थई सेंगा। गांवनी अर्थव्यवस्था में खेती ना महत्व में एणे आपणे बताड्यू कि आजीविका ना स्त्रोत कया कया है, खाद्य ने पोषण की सुरक्षा अपने हरते करी शक, स्थानीय बाजार ने आर्थिक गतिविधियां ने हरते अपना ने बढ़ावो आलवो है, पशुपालन ने सहायक जे आजीविका है एने महत्व ने अपने हरते समझवो है, एने साथे एने ई भी बताड्यो कि प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण अपना ने हरते करवो है। आ सबे माध्यम तकी आना सब माध्यम तकी अपने खेती तकी अपनी अर्थव्यवस्था ने हदारी शक। तो आशा कर रहा कि हंगरी बात अपने भाई बहनों ने गमी होगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वा। तो सूटा तो पड़ पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।
2: हवे अंजलि बोन हमारे रेजू किसान भाई बहनों, आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.5 FM।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है
3: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
5: हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
6: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमर अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
5: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम समाज से जुड़े उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही समस्या की जो हमारे आसपास मौजूद तो है, लेकिन कई बार हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह समस्या है श्रोता साथियों, बाल श्रम। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है साथियों। यह वह उम्र है जब बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और उनके सपनों को उड़ान मिलनी चाहिए। लेकिन श्रोता साथियों, दुख की बात यह है कि आज भी अनेक बच्चे स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करने को मजबूर हैं। कोई चाय की दुकान पर काम कर रहा है, कोई खेतों में मेहनत कर रहा है, तो कोई कारखानों में अपने बचपन को खो रहा है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से बाल श्रम को लेकर हम आगे भी जानेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बाल श्रम को लेकर। श्रोता साथियों, बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर सामाजिक मुद्दा है। तो श्रोता साथियों, आइए इस विषय को समझने के लिए सुनते हैं दो महिलाओं के बीच का संवाद।
1: अरे सीमा बहन, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी?
2: नमस्ते राधा बहन, मैं स्कूल जा रही हूँ। वो आज गांव के बच्चों की पढ़ाई और बाल श्रम को लेकर एक बैठक वहाँ रखी गई है।
1: अच्छा, अरे इस बैठक में क्या जरूरी है ऐसा? गरीब परिवारों के बच्चे अगर थोड़ा काम कर लेते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
2: बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये सोच तो बदलने की जरूरत है ना बहन। इससे उनका बचपन और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं, और यही बात हमें समझने की जरूरत है।
1: लेकिन अगर बच्चा घर की मदद करेगा तो परिवार का खर्चा भी तो चल पाएगा ना सीमा बहन?
2: अरे राधा बहन, खर्च तो कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन आप सोचो कि अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो आगे चलकर अच्छी नौकरी या रोजगार भी तो प्राप्त कर सकता है। तब तो वह पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है।
1: बात तो तुम्हारी सही है सीमा, लेकिन कई परिवार मजबूर भी तो होते हैं ना?
2: हाँ, मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन समाधान बच्चों से मजदूरी करवाना नहीं है। सरकार ने शिक्षा के अधिकार का कानून भी तो बनाया है ताकि हर बच्चा स्कूल जा सके। कई योजनाएं भी चल रही हैं जिनसे गरीब परिवारों को सहायता मिलती है।
1: मैंने कई बार छोटे बच्चों को दुकानों और होटलों में काम करते देखा है, उन्हें देखकर दुख भी होता है थोड़ा सा।
2: अरे राधा बहन, जरा सोचो, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, नई बातें सीखते हैं, सपने देखते हैं, उसी उम्र में अगर उन्हें घंटों मेहनत करनी पड़े तो उनके मन और शरीर पर कितना बुरा असर पड़ सकता है।
1: हाँ, कई बच्चे थके हुए और उदास भी दिखाई देते हैं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा भी है।
2: हाँ, क्योंकि बाल श्रम बच्चों से केवल उनका समय नहीं छीनता, बल्कि उनका आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार भी छीन लेता है।
1: लेकिन समाज में लोग इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं सीमा बहन?
2: बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा मजदूरी करता दिख रहा है तो उसके परिवार को शिक्षा के महत्व के बारे में समझा सकते हैं, और इसी के आगे जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात तो ये है राधा बहन कि बच्चों को मजदूर नहीं बल्कि विद्यार्थी के रूप में देखने की सोच विकसित करनी होगी हम सभी को।
1: अब मुझे समझ आया सीमा बहन कि बाल श्रम केवल एक बच्चे की नहीं पूरे समाज की समस्या है।
2: बिल्कुल, जब एक बच्चा स्कूल से दूर होता है तो समाज एक भविष्य के शिक्षक, डॉक्टर, किसान, वैज्ञानिक और साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक को भी खो देता है।
1: सीमा बहन, आज आपने मेरी सोच बदल दी। मैं भी अपने आसपास के लोगों को समझाऊंगी

0: बच्चों का स्थान काम की जगह नहीं है, बल्कि उस स्कूल और खेल के मैदान में है।
1: हाँ, और यही जागरूकता सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। जब समाज और परिवार मिलकर बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देंगे ना बहन, तब बाल श्रम जैसी समस्या अपने आप ही कम होने लगेगी।
0: सही कहा, हर बच्चे को सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल बचपन मिलना चाहिए।
1: हाँ, और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है।
2: तो श्रोता साथियों, अभी हमने रेडियो नाटक के माध्यम से जाना कि बाल श्रम क्या है और ये हमारे बच्चों के बचपन को कैसे खराब कर रहा है। तो साथियों, बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि बचपन के अधिकारों का हनन है। एक बच्चा जब मजदूरी करता है तो वह केवल अपना वर्तमान नहीं खोता, बल्कि उसका भविष्य भी सीमित हो जाता है। किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसके बच्चों की स्थिति से मापी जाती है। यदि श्रोता साथियों, बच्चे शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित हैं, तो आज का भविष्य उज्जवल है। श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बाल श्रम को केवल एक सामाजिक समस्या मानकर चर्चा तक सीमित न रखें, बल्कि इसके समाधान में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें, जरूरतमंद परिवारों की सहायता करें और ऐसी परिस्थितियां बनाने में योगदान दें जहां कोई भी बच्चा मजबूरी में मजदूरी करने के लिए विवश न हो। याद रखिए श्रोता साथियों, बच्चों के हाथों में औजार नहीं किताबें शोभा देती हैं, उनके कंधों पर बोझ नहीं सपने होने चाहिए। जब एक बच्चा शिक्षा पाएगा तभी हमारा समाज सच्चे अर्थों में विकसित और समृद्ध बनेगा। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें रही। हमने रेडियो नाटक के माध्यम से जाना कि बाल श्रम क्या है, यह हमारे बच्चों के बचपन को कैसे खराब कर रहा है और हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा की ओर ले जाना है। तो बातें तो मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में।

दोस्तों, नन्हे हाथों में कलम होनी थी, सपनों की कोई उड़ान होनी थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया। बचपन में मजदूरी का बोझ लिया, कंधों पर बस्ता अच्छा लगता, विद्यालय का रास्ता सच्चा लगता, पर जीवन की कठिनाइयां ऐसी आई, खेलने की उम्र में जिम्मेदारियां छाई। कोई होटल में बर्तन धोता, कोई धूप में पसीना बहाता, मासूम आंखों के छोटे छोटे सपने समय से पहले ही टूट जाते अपने। बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, उम्मीदों के सुंदर दीप होते हैं। इनके अधिकार न कोई छीन सके, इनके सपनों को कोई न बीन सके। आओ मिलकर यह प्रण उठाएं, हर बच्चे को विद्यालय पहुंचाएं। न होगा बाल श्रम, न होगा अंधकार, शिक्षा से ही होगा जीवन साकार। बचपन हंसता गाता रहे, हर आंगन में उजियारा रहे। नन्हे हाथों में किताबें हो और आंखों में सुनहरे ख्वाब हो। तो श्रोता साथियों, इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
6: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
5: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
6: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
8: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं श्रोता साथी, जो हमारे जीवन की सही दिशा और दशा दोनों बदल सकता है।
0: बिल्कुल,
1: विषय है सही सोच ही खुशी का पहला कदम है। श्रोताओं, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। कोई धन में खुशी ढूंढता है कशिश, कोई सफलता में, कोई रिश्तों में और कोई सुविधाओं में।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है श्रोता साथियों कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग तरह से क्यों प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुराता रहता है, जबकि दूसरा छोटी सी परेशानी में भी दुखी हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और इसका कारण है सोच, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। सही सोच हमें खुशी की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें तनाव, चिंता और निराशा की ओर धकेल देती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में आगे हमारे श्रोता साथियों से इसी विषय को लेकर हम ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना जरूरी है और कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों विषय बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं, सही सोच ही खुशी का पहला कदम होती है। हम देखते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में लगा रहता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल।
0: कोई धन में खुशी ढूंढता है, कोई सफलता में, तो कोई प्रसिद्धि में, और कोई तो रिश्तों में भी खुशी को ढूंढने का प्रयास करता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन दोस्तों, यदि हम गहराई से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत तो बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच होती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति कठिनाई में भी अवसर खोज लेता है, जबकि दूसरा अवसरों के बीच भी परेशान रहता है।
1: जी हाँ।
0: इसका कारण दोस्तों परिस्थितियां नहीं बल्कि सोच का अंतर होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कहा गया है कि सही सोच ही खुशी का पहला कदम है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि सही सोच का अर्थ केवल सकारात्मक बातें करना नहीं है। सही सोच का मतलब है परिस्थितियों को समझदारी से देखना, समस्याओं में अवसर खोजना और हर परिस्थिति में संतुलित निर्णय लेना।
0: बिल्कुल।
1: सही सोच वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो ये मानता है कि समस्या जीवन का हिस्सा है और उनका समाधान भी संभव है।
0: बिल्कुल।
1: जब हम सही सोच विकसित करते हैं तब हम दूसरों की सफलता से जलते नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हैं। हम अपनी असफलताओं को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। श्रोताओं,
0: बिल्कुल।
1: और कहा भी गया है कि सोच अगर सही बनाएंगे तो जीवन में खुशियां हमें अपार मिलेगी।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ जब हमारी सोच सकारात्मक, संतुलित और रचनात्मक होती है तब जीवन की चुनौतियां भी हमें कमजोर नहीं कर पाती है। हम देखते हैं कि हम हर स्थिति में सीखने, आगे बढ़ने और मुस्कुराने का रास्ता खोज ही लेते हैं। और आज के समय में तो जागृति जी, युवाओं के सामने शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगिता, सामाजिक दबाव और भविष्य की कई सारी चिंताएं, चुनौतियां बनी हुई है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में सही सोच केवल खुशी का माध्यम ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी आधार बन जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज का इंसान अक्सर सोचता है कि यदि उसके पास अधिक पैसा है, बड़ा घर या महंगी गाड़ी होगी तो वो खुश हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इतिहास और वर्तमान दोनों बताते हैं श्रोता साथियों कि कई संपन्न लोग भी तनाव और चिंता में जीवन बिताते हैं, जबकि सीमित साधनों वाले लोग भी संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं।
0: जी हाँ।
1: खुशी वस्तु से नहीं बल्कि उन्हें देखने के नजरिए से आती है। यदि व्यक्ति हर समय कमी ही देखता रहेगा तो उसके पास कितना भी हो उसे कम ही लगेगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यदि वो अपने पास मौजूद चीजों के प्रति कृतज्ञ रहेगा तो साधारण जीवन में भी खुशी महसूस करेगा।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: हमारी सोच श्रोता साथियों हमारे निर्णयों, व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती ही है। यदि मन में निराशा, डर और नकारात्मकता भरी होगी तो छोटे छोटे अवसर भी नहीं दिखाई देंगे।
1: जी हाँ।
0: वही जागृति जी, यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो कठिन रास्तों में भी हमें उम्मीद की रोशनी जरूर दिखाई देगी, क्योंकि सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। साथियों,
1: बिल्कुल।
0: एक छात्र परीक्षा को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मानता है, जबकि दूसरा छात्र उसे डर और तनाव का कारण समझता है।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, ये दोनों ही परिस्थितियां समान है, लेकिन सोच अलग अलग है, इसलिए अनुभव भी अलग अलग है। सही सोच श्रोता साथियों हमें ये सिखाती है कि समस्याएं जीवन का अंत नहीं होती बल्कि सीखने और मजबूत बनने का अवसर होती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हर समय सोचता है कि उससे कुछ नहीं होगा, लोग उसके खिलाफ है, उसका भाग्य खराब है या दुनिया न्यायपूर्ण है, वो कभी भी सच्ची खुशी महसूस ही नहीं कर सकता। नकारात्मक सोच एक ऐसे चश्मे की तरह श्रोता साथी जो हर चीज को धुंधला और बुरा दिखाती है। ऐसा व्यक्ति अवसरों में भी समस्या देखता है, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्याओं में भी अवसर ढूंढ लेता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए यदि खुश रहना है श्रोताओं तो सबसे पहले नकारात्मक सोच की जड़ों को पहचानना और उन्हें बदलना होगा।
0: जी हाँ।
1: कहा गया है कि नकारात्मकता जब छूटेगी तब खुशी अपने आप ही दस्तक देगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि सही सोच ही खुशी का पहला कदम है, तो आगे भी ये महत्वपूर्ण बातें जारी रहेंगी हमारी, लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हमारी बातें चल रही थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सही सोच ही खुशी का पहला कदम है।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने सही सोच क्या होती है, खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर पैदा होती है, साथ ही नकारात्मक सोच खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने की थी।
1: जी जी,
0: यही बात करते हैं कि कृतज्ञता

0: प्रीति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग खुशी को केवल मनोरंजन या पैसा उपलब्धियों से ही जोड़कर रखते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तविक खुशी उससे कहीं अधिक गहरी होती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि वास्तविक खुशी वह अवस्था है जिसमें मन संतुष्ट, शांत और आशावान होता है। खुशी का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कोई समस्या ही न हो,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि खुशी का मतलब तो ये है कि समस्याओं के बीच भी मन में विश्वास और उम्मीद बनी रहे। जागृति जी, जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को समझदारी से स्वीकार करता है और उनका समाधान खोजने का प्रयास करता है, तब हम देखते हैं कि वह सच्ची खुशी का अनुभव अपने आप ही करने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्तों, सही सोच इसी खुशी तक पहुंचने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होती है। जागृति जी,
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है। परीक्षा में कम अंक आना, नौकरी न मिलना, व्यवसाय में नुकसान होना या किसी लक्ष्य तक न पहुँच पाना, ये सब जीवन का हिस्सा है। गलती तब होती है जब हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सही सोच हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक घटना है, व्यक्ति की क्षमता नहीं। हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती है। जो व्यक्ति असफलताओं से सीखता है वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि खुशी का संबंध केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों से भी है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, क्षमा करना सीखते हैं, संवाद बनाए रखते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। गलतफहमियां अक्सर गलत सोच से जन्म लेती है कशिश।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम हर बात को नकारात्मक रूप से समझेंगे तो रिश्तों में दूरी पड़ेगी, लेकिन यदि हम धैर्य और समझदारी से सोचेंगे तो रिश्तों में प्रेम और विश्वास पड़ेगा।
0: जी हाँ, आपने सही कहा। साथी दोस्तों, खुशी को पाने के लिए तुलना की आदत को भी छोड़ना होगा।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया के दौर में तुलना की समस्या बहुत बढ़ गई है। जागृति जी, लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन ऐसे में हमें ये समझना चाहिए दोस्तों कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता देखकर प्रेरित होना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं की तुलना करना दुख और असंतोष को जन्म दे सकता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में सही सोच हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी क्षमताओं और प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम जागृति जी अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वास्तविक खुशी हमारे करीब आती है।
1: बिल्कुल।
0: कई युवा ऐसे हैं जो एक या दो असफलताओं के बाद निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे ये सोचने लगते हैं कि अब उनके लिए कोई अवसर बचा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम युवा साथियों से कहना चाहेंगे कि साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि अधिकांश सफल लोगों ने अनेक असफलताओं का सामना किया है।
1: जी हाँ,
0: असफलता सफलता का विरोध नहीं करती, बल्कि उसका हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल कशिश, हम एक उदाहरण के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, दो किसान थे, दोनों की फसल एक ही वर्ष सूखे के कारण खराब हो गई।
0: बिल्कुल।
1: पहला किसान हर समय शिकायत करता रहता था, वो कहता था कि उसका भाग्य खराब है और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कशिश, जो दूसरा किसान था वो दुखी तो था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। उसने नई तकनीक सीखी, वर्षा जल संरक्षण किया और अगले वर्ष फिर मेहनत की।
0: जी हाँ,
1: कुछ वर्षों बाद वही किसान पूरे क्षेत्र का सफल किसान बन गया। जब लोगों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, परिस्थितियां दोनों के लिए समान थी, फर्क केवल सोच का था। तो श्रोता साथियों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है, और इस तरीके की शुरुआत हमारी सोच से होती है। यदि हम हर दिन अपनी सोच को थोड़ा बेहतर बनाएंगे, शिकायतों की जगह कृतज्ञता अपनाएंगे, नकारात्मकता की जगह आशा चुनेंगे और हार की जगह सीख को महत्व देंगे, तो खुशी स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों, कि धन, पद, प्रसिद्धि खुशी की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन सही सोच अवश्य देती है।
0: बिल्कुल। युवा साथियों, याद रखिए कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी चुनौतियां सामने आती है। ऐसे में परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होने वाली है।
1: जी हाँ।
0: जबकि हमारी जो सोच है वो हमेशा हमारे हाथ में होगी।
1: बिल्कुल।
0: यदि सोच सही हो जागृति जी, तो अंधेरे में भी रास्ते दिखाई देते हैं। वहीं यदि सोच गलत हो तो उजाले में भी निराशा नजर आती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए युवा साथियों, अपनी सोच को सकारात्मक, रचनात्मक और आशावादी बनाइए।
1: जी हाँ।
0: अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और हर परिस्थिति से सीखने का प्रयास कीजिए। याद रखिए साथियों, खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि सही सोच के साथ तय किया गया एक सुंदर सफर है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो श्रोता साथियों, तो परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपनी सोच की ओर जरूर देखिएगा, क्योंकि सूरज उगने से पहले उजाला आसमान में नहीं मन में पैदा होता है।
0: बिल्कुल।
1: खुशी किसी दुकान में नहीं मिलती, न ही किसी सफलता के बाद अचानक मिलती है। खुशी उस पल में जन्म लेती श्रोता साथियों, जब हम ये तय करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे।
0: जी हाँ।
1: इसलिए याद रखिए, विचार बीज है, जीवन उनका फल है। यदि बीज अच्छे होंगे तो खुशियों का वृक्ष भी अवश्य खिलेगा।

0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे क्योंकि देख रहे हैं कि बातें ढेर सारी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनवाते हैं श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो युवा साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि बेटियों की सफलता बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। श्रोताओं, जैसा कि किसी भी समाज की प्रगति का सही आंकलन इस बात से किया जाता है कि वहाँ महिला और बेटियों को कितना सम्मान, अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त है। आज का भारत एक ऐसे परिवर्तन का साक्षी बन रहा है जहाँ बेटियाँ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा हो गई, विज्ञान हो गया, खेल, राजनीति, सेना, व्यापार, कला और तकनीक, ये सारे क्षेत्रों में बेटियों की सफलता साबित कर रही है कि वे किसी से कम नहीं है। उनकी उपलब्धियाँ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है बल्कि समाज में बढ़ते आत्मविश्वास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में इस विषय पर ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों से अवश्य रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत में हम हमारे दोस्तों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज हमारी बातें रहने वाली है बेटियों की सफलता बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि, एक समय था जब बेटियों को केवल घर की चार दीवारें तक सीमित रखने की सोच प्रचलित थी, लेकिन आज वही बेटियां अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास के बल पर नई ऊंचाइयों को छू रही है।
1: जी जी।
0: उनकी सफलता ये संदेश देती है कि अवसर मिलने पर बेटियां भी देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि बेटियां केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की शक्ति है। जब किसी बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो वह केवल अपना जीवन नहीं बदलती बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनती है।
0: बिल्कुल,
1: आज गांवों से लेकर शहरों तक अनेक बेटियां अपनी मेहनत और लगन से नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। वे यह साबित कर रही हैं जागृति जी कि सफलता का संबंध लिंग से नहीं बल्कि प्रतिभा, परिश्रम और अवसर से होता है।
0: बिल्कुल,
1: आत्मविश्वास श्रोता साथियों वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का साहस देती है। जब बेटियों में परिवार का समर्थन, शिक्षा और सम्मान मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से भरपूर बेटी जागृति जी अपने निर्णय स्वयं लेने का साहस रखती है, चुनौतियों का सामना कर सकती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है और दूसरों की प्रेरणा बनती है। एक आत्मविश्वासी बेटी केवल अपने सपनों को पूरा नहीं करती बल्कि समाज में नई सोच को जन्म देती है।
0: बिल्कुल अंजलि, आत्मविश्वास वो शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसा कि अभी आपने कहा था, शिक्षा किसी भी व्यक्ति के विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: जी जी।
0: पिछले कुछ वर्षों में बेटियों की शिक्षा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज माता पिता अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उत्साहित है। शिक्षा ने बेटियों को ज्ञान, समझ और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है। इससे उनमें आत्मविश्वास का विकास हुआ है। शिक्षित बेटियां अपने अधिकारों को समझती है और समाज में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: वे न केवल स्वयं सशक्त बनती है बल्कि अपने परिवार और समाज को भी आगे बढ़ाती है। इसलिए कहा भी गया है कि शिक्षित बेटी आत्मविश्वासी बेटी, यही है विकास की सच्ची सीढ़। श्रोताओं, खेलों के क्षेत्रों में भी आज हम देखते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं।
1: जी जी।
0: उनकी उपलब्धियां लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं करती अंजलि बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास का भी परिचायक है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई बेटी खेल के मैदान में सफलता प्राप्त करती है तो ये साबित करती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता से समाज की पुरानी अवधारणाएं टूटती है और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज गांवों की बेटियां भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। पहले जहां अनेक लड़कियों की शिक्षा जल्दी रुक जाती थी, वहीं अब वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कई बेटियां स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं, कुछ कृषि में नए प्रयोग कर रही हैं तो कुछ छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। श्रोता साथियों, ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। जब गांव की बेटी आत्मनिर्भर बनती है जागृति जी, तो पूरे गांव की सोच बदलने लगती है। किसी भी बेटी की सफलता के पीछे परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब माता पिता अपनी बेटी पर विश्वास करते हैं, उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं और अपने सपनों का सम्मान करने देते हैं जागृति जी, तब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। परिवार को चाहिए श्रोता साथियों कि बेटियों को बेटों के तरह ही रखे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करे, शिक्षा के समान अवसर दें, उनकी रुचियों को समझें, सफलता के समय उनका मनोबल बढ़ाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखिए श्रोता साथियों कि एक प्रोत्साहन भरा

0: शब्द भी किसी बेटी के जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है बेटियों की शिक्षा को लेकर, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: जागृति जी, गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि बेटियां जो हैं वो आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ रही हैं, ग्रामीण बेटियों की बदलती तस्वीर के बारे में हमने जाना, परिवार की क्या भूमिका है ये हम जान पाए, यही बात करें समाज की बदलती सोच के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, समाज में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लोग अब समझने लगे हैं जागृति जी कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि अमूल्य संपत्ति है।
1: बिल्कुल।
0: आज कई परिवार अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा, खेल और व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वे अपने सपनों को साकार कर रही हैं। अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं जागृति जी, लेकिन जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से इनको दूर किया जा सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में बेटियां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। वे वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता और तकनीक विशेषज्ञ बनकर नई खोजों में योगदान दे रही है।
0: बिल्कुल।
1: आज अनेक बेटियां प्रशासनिक सेवाओं, राजनीतिक और नेतृत्व के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे बड़े बड़े निर्णय लेकर समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रही है।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, आज हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बेटियों की सफलता के पीछे परिवार की सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब परिवार बेटियों पर विश्वास करता है अंजलि, और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है, तब वे अपने सपनों को साकार कर पाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज अनेक परिवार ये समझ चुके हैं कि बेटियां भी परिवार का गौरव बढ़ा सकती हैं। यही कारण है कि बेटियों को शिक्षा, खेल, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
0: जी जी।
1: ये बदलाव समाज में बढ़ते आत्मविश्वास और समानता की भावना को दर्शाता है। बेटियों की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है श्रोताओं, सामाजिक परिवर्तन की पहचान है। ये दर्शाती है अंजलि कि समाज धीरे धीरे रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: और समान अवसरों की ओर बढ़ रहा है। जब बेटियां सफल होती हैं तो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनती हैं। उनकी उपलब्धियां ये संदेश देती है कि लिंग के आधार पर किसी भी क्षमता का आंकलन नहीं किया जा सकता। ये सोच समाज को और अधिक प्रगतिशील और न्यायपूर्ण बनाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, सच्चा स्वराज वह है जहां व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हो। यदि समाज में बेटियां भय, भेदभाव और असमानता का सामना कर रही हैं, तो स्वराज अधूरा माना जाएगा। लेकिन जब बेटियां आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं, निर्णय लेती हैं, नेतृत्व करती हैं, तब सच्चे स्वराज की भावना मजबूत होती है। बेटियों की सफलता हमें यह संदेश देती है श्रोता साथियों कि विकास तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग समान रूप से आगे बढ़े।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि बेटियों की सफलता केवल पुरस्कारों और उपलब्धियों की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत की तस्वीर है जहां आत्मविश्वास, समानता और अवसर मिलकर विकास का मार्ग तैयार करते हैं। जब कोई बेटी स्कूल की दहलीज पार करती है, जब वह अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करती है, जब वह समाज की पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है और सफलता प्राप्त करती है, तब वह केवल अपनी जीत नहीं लिखती बल्कि वह पूरे समाज के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बेटियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रही है। और जब बेटियां आत्मनिर्भर बनती है तो केवल अपने जीवन को नहीं बदलती बल्कि वो पूरे परिवार और समाज को सशक्त बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: बेटियों का आत्मविश्वास राष्ट्र के विकास को नई गति प्रदान करता है। श्रोताओं, हालांकि आज हम देखते हैं कि कई स्थानों पर बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और अवसरों से जुड़े चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है अंजलि, लेकिन इन समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों से संभव है। समाज को बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा और हम देखते हैं कि समाज अपना भी रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा भी दे रहे हैं, भेदभाव को समाप्त भी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध करा रहा है समाज, क्योंकि जब हर बेटी को समान अवसर मिलेगा तब उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत होगा। इसलिए कहा भी गया है कि अवसर समान होंगे तब बेटियां भी आगे बढ़ेंगी।
0: बिल्कुल।
1: बेटियों की सफलता बढ़ते आत्मविश्वास का सबसे सुंदर और प्रेरणादायक प्रतीक है। उनकी उपलब्धियां सिद्ध करती है कि यदि अवसर, शिक्षा और प्रोत्साहन मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है। वे केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाती है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बेटियों पर विश्वास करें, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दें और उनके सपनों को सम्मान दें। जब हर बेटी आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी तब हमारा समाज और राष्ट्र और अधिक मजबूत, समृद्ध तथा प्रगतिशील बनेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज समय बदल रहा है और इस बदलाव की सबसे सुंदर तस्वीर हमारी बेटियों के रूप में दिखाई दे रही है। वे शिक्षा के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रही हैं, खेल के मैदानों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं, खेती किसानी से लेकर व्यापार तक अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। श्रोता साथियों, सामाजिक नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया है जागृति जी, बल्कि इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, परिवार का विश्वास, शिक्षकों का मार्गदर्शन और स्वयं बेटियों की अथक मेहनत शामिल होती है। इसलिए कह सकते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बेटियों को दया या सहानुभूति की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामर्थ्य और संभावनाओं की दृष्टि से देखें, उन्हें अवसर दें, प्रोत्साहन दें, उनकी बात सुने और उनके निर्णयों का सम्मान करें। जब समाज बेटियों पर विश्वास करना सीख जाता है, तब बेटियां स्वयं पर और अधिक विश्वास करने लगती है, और यही विश्वास जागृति जी उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, और यही आत्मविश्वास देश की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेटी कोई बोझ नहीं बल्कि संभावनाओं का अथाह सागर है। उनके सपनों को पंख दीजिए श्रोता साथियों, उनके आत्मविश्वास को शक्ति दीजिए और उनकी मेहनत का सम्मान कीजिए। जिस दिन हर बेटी निर्भय होकर अपने सपनों की उड़ान भर सकेगी, उस दिन भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए, बेटियों की सफलता केवल उनकी जीत नहीं होती, वो पूरे समाज के आत्मविश्वास की जीत होती है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें रही, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ
2: कशिश और मनीषा, आज हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम में बातचीत का विषय है खीरा और शरीर में पानी की पूर्ति को लेकर।
1: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं कि गर्मी का मौसम आते ही हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की।
1: जी हाँ,
2: तेज धूप, पसीना, बढ़ता तापमान शरीर से पानी की मात्रा को कम कर देता है। ऐसे में यदि हम पानी और पौष्टिक आहार न लें तो थकान, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी जैसी समस्याएं होने लगती है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ दिए हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: खीरा उनमें से ही एक है। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि खीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये शरीर में पानी की पूर्ति कैसे करता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करने का दस्तूर है कार्यक्रम का।
2: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
0: बिल्कुल। जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बताया ही था कि आज हम बात करने वाले हैं खीरा और शरीर में पानी की कमी को कैसे पूरा करें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी और कशिश, हम देखते हैं कि मानव शरीर का लगभग 60-70% भाग पानी से बना होता है। शरीर के सभी अंगों को, प्रणालियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में पसीने के माध्यम से शरीर से अधिक मात्रा में पानी निकल जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी यानी कि श्रोता साथियों डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थों का सेवन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जो शरीर के पानी की पूर्ति के साथ साथ अंजलि जी हमारे शरीर में पोषक तत्व भी प्रदान करता है। खीरा ऐसा ही श्रोता साथियों एक प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है।
2: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि खीरा एक ऐसी सब्जी है जिसमें लगभग 95% तक पानी पाया जाता है। यही कारण है कि इसे गर्मियों का सबसे अच्छा आहार माना जाता है।
1: बिल्कुल,
2: जब हम खीरा खाते हैं तो यह केवल पेट नहीं भरता बल्कि शरीर को आवश्यक जल भी प्रदान करता है। आजकल लोग कई तरह के ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन उनमें अक्सर अधिक चीनी, कृत्रिम तत्व होते हैं। इसके विपरीत खीरा प्राकृतिक, सस्ता और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि खीरा केवल प्यास बुझाने का कार्य नहीं करता, बल्कि ये हमारे शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और हमें अनेक बीमारियों से बचाने में भी सहायता करता है।
0: जी हाँ
1: अंजलि जी और मनीषा, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होने वाला खीरा स्वास्थ्य का एक सस्ता और प्रभावी साधन है। हम कह सकते हैं कि खीरा एक हरी सब्जी है जो बेल पर उगती है। श्रोता साथियों, भारत में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और गर्मियों में खीरे की मांग सबसे अधिक रहती है, क्योंकि यह जो चीज है यह शरीर को ठंडक और ताजगी दोनों प्रदान करती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ अगर बात करें कि शरीर में पानी का क्या महत्व है, तो हम देखते हैं कि पानी मानव जीवन का आधार है। शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा होने से हमारे शरीर के कई अंग है जो सही ढंग से काम करते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, पानी शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। गर्मी में पसीने के माध्यम से शरीर से अतिरिक्त ताप बाहर निकल जाता है। साथियों
1: बिल्कुल
0: साथ ही हम देखते हैं कि पानी शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, पानी भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होता है।
2: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले लोगों को तेज धूप में कई घंटों बिताने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल
2: ऐसे में शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलता है। यदि खेत पर जाते समय साथ में खीरा रखा जाए और बीच बीच में खाया जाए तो यह शरीर को ठंडक, ऊर्जा दोनों देता है।
1: बिल्कुल
2: प्राकृतिक और सस्ता उपाय है श्रोता साथियों, जो महंगे पेय पदार्थों की आवश्यकता को कम करता है।
1: बिल्कुल
2: यही बात करें खीरे के स्वास्थ्य लाभ की, तो श्रोता साथियों खीरे में पानी और रेशे दोनों होते हैं। इससे भोजन आसानी से पचता है और कब्ज की समस्या कम होती है। खीरे में कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए जो लोग अपना वजन नियंत्रित रखना चाहते हैं उनके लिए खीरा एक अच्छा विकल्प है।
0: बिल्कुल
2: शरीर में पर्याप्त पानी होने से त्वचा स्वस्थ, चमकदार बनी रहती है। खीरा त्वचा को प्राकृतिक नमी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल
2: गर्मियों में शरीर के तापमान को संतुलित रखने में खीरा मदद करता है। यही कारण है कि इसे गर्मी के मौसम में विशेष रूप से खाने की सलाह दी जाती है।
1: बिल्कुल
2: खीरे में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है श्रोता साथियों, जिससे हृदय को भी लाभ मिलता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
2: बिल्कुल
1: लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं हम।
2: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि खीरे के क्या स्वास्थ्य लाभ है और किस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य को ढेर सारे लाभ पहुंचाता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही बात करें तो खीरे को हमें अच्छी तरह धोकर खाना है। सलाद के रूप में भोजन के साथ हम इसे शामिल कर सकते हैं, दही के साथ रायता बनाकर खा सकते हैं, नींबू और थोड़ा सा काला नमक डालकर खाया जा सकता है।
1: जी हाँ,
0: बच्चों के टिफिन में भी खीरे के टुकड़े दिए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत देर तक कटे हुए खीरे को खुला न रखें, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व खत्म हो सकते हैं।
2: जी हाँ दिलीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि खीरा प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, क्योंकि श्रोता साथियों, इसमें मौजूद लगभग 95% पानी शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी,
2: इसके साथ ही श्रोता साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, त्वचा को निखारता है और वजन को नियंत्रित रखने में भी सहायता करता है, साथ ही शरीर को ठंडक प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन का सरल मंत्र श्रोता साथियों हम सभी को अपनाना चाहिए और गर्मी के दिनों में खीरा हमें नियमित रूप से खाना चाहिए।
3: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में लोग कोल्ड ड्रिंक और कृत्रिम पेयों का अधिक सेवन करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथियों, इसके स्थान पर खीरा, तरबूज, खरबूजा और अन्य प्राकृतिक जल युक्त खाद्य पदार्थ अपनाने से हमारा शरीर भी ठीक रहता है।
2: बिल्कुल,
3: विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को खीरे के लाभों के बारे में जानकारी भी दी जानी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि स्वस्थ जीवन के लिए हमेशा महंगे खाद्य पदार्थों की जरूरत नहीं होती है। कई बार कशिश, हमारे आसपास उपलब्ध साधारण चीजें ही सबसे अधिक लाभ पहुंचाती है। खीरा इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति ने हमारी जरूरतों का समाधान पहले से ही तैयार कर रखा है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है।
2: बिल्कुल,
0: आज जब बढ़ती गर्मी और बदलती जलवायु हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, तब खीरा केवल एक सब्जी नहीं बल्कि स्वास्थ्य का एक सरल साथी बन जाता है।
2: जी हाँ,
0: हमें याद दिलाता है कि शरीर की देखभाल छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। भोजन की थाली में शामिल एक खीरा हमें ताजगी, संतुलन और स्वास्थ्य का उपहार दे सकता है।
2: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि खीरे में मौजूद पानी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल,
2: इससे हमारा शरीर दोस्तों हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। साथ ही देखते हैं कि खीरे में बीटा कैरोटीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं।
0: बिल्कुल जी हाँ,
2: जो हमारी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं श्रोता साथियों। ऐसे में श्रोता साथियों, अगर हम अपनी आंखों पर खीरे के टुकड़े रखते हैं तो इससे हमारी आंखों को ठंडक और आराम दोनों मिलता है।
3: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि खीरा प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो शरीर में पानी की पूर्ति करने के साथ साथ अनेक स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है।
2: बिल्कुल,
3: इसमें प्रचुर मात्रा में पानी, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। विशेष रूप से श्रोता साथियों, गर्मी के मौसम में खीरे का नियमित सेवन डिहाइड्रेशन से बचाव, शरीर को ठंडक पहुँचाने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी उपयोगी है।
0: बिल्कुल,
3: इसीलिए अंजलि जी और कशिश, प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में खीरे को शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर में पानी का संतुलन बना रहे और स्वस्थ जीवन का आनंद भी ले सके।
0: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर स्वास्थ्य की बड़ी समस्याओं के समाधान बड़े उपायों में खोजते हैं, जबकि कई बार उनके उत्तर हमारे खेतों, बगीचों, रसोई में ही मौजूद होते हैं। खीरा भी ऐसा ही एक प्राकृतिक उपहार है, जो हमें समझाता है कि स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के करीब रहना कितना जरूरी है।
2: बिल्कुल,
0: आज के समय में जब हम कई अलग पेय पदार्थों और त्वरित समाधानों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तब हमें पारंपरिक और प्राकृतिक खानपान की ओर लौटने की आवश्यकता है। खीरा केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर को संतुलित रखने, मौसम के प्रभावों से बचाने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का एक सरल माध्यम है।
2: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इस मौसम में अपने भोजन के रंग बिरंगे और पौष्टिक विकल्पों से इन सारी चीजों को आप सजाइए, प्रकृति के उपहारों का सम्मान कीजिए, स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानिए। याद रखिए कि स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।
2: जी हाँ दिलीप जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
3: बिल्कुल,
2: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
3: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत और गीत संगीत आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी पे लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
3: नमस्कार।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है।
0: जी बिल्कुल,
1: आज हम बात कर रहे हैं विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस। हर वर्ष श्रोता साथियों 12 जून यानी आज ही के दिन यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को बाल श्रम की गंभीर समस्याओं के प्रति जागरूक करना और बच्चों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में प्रयास करना है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनके हाथों में किताबें, खिलौने और सपने होने चाहिए, लेकिन आज भी दुनिया के लाखों बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर है। कोई होटल में बर्तन धो रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कोई खेतों में मजदूरी कर रहा है, तो कोई घरों में काम कर रहा है। ये स्थिति न केवल मनीषा बच्चों के अधिकारों का हनन करती है बल्कि मानवता के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि बालक किसी भी राष्ट्र के अमूल्य धरोहर होते हैं। उनके स्वास्थ्य, शिक्षित और सुरक्षित भविष्य पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। बचपन का जीवन श्रोता साथियों सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें बच्चों की शिक्षा, खेल, मनोरंजन, अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलने चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि आज जो बच्चे हैं बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर हम बातें कर रहे हैं तो हम अधिकांश देखते हैं अंजलि जी कि बच्चे होटलों में, खेतों में और घरों में काम करते दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि बाल श्रम का अर्थ है बच्चों से ऐसा काम करवाना जो उनकी उम्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो। जब कोई बच्चा पढ़ाई करने, खेलने की उम्र में मजदूरी करने लगता है तब उसे बाल श्रम कहा जाता है।
0: जी हाँ।
1: घर के सामान्य कार्यों में बच्चों की सीमित सहायता अलग बात है, लेकिन जब उनसे लंबे समय तक काम करवाया जाता है, मजदूरी कराई जाए या खतरनाक परिस्थिति में काम करवाया जाए तो वह बाल श्रम की श्रेणी में आता है। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य श्रोता साथियों बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, सरकारों, संस्थाओं और समाज को एकजुट करना और बच्चों को शिक्षा, सुरक्षित बचपन उपलब्ध कराना है।
0: बिल्कुल।
1: खतरनाक और शोषणकारी कार्यों से बच्चों की मुक्ति कराना। आज यह दिवस मनीषा दुनिया के अनेक देशों में अलग अलग कार्यक्रमों, अभियानों और चर्चाओं के माध्यम से मनाया जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ऐसे कार्यों में लगातार जाते हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और शैक्षणिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उसे बाल श्रम कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे कार्य श्रोता साथियों बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हैं और उनके बचपन को भी छीन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बाल श्रम केवल आर्थिक शोषण नहीं है बल्कि ये बच्चों के मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है। कई बार बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करते हैं अंजलि जी, जिससे हम देखते हैं उनका स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि यही अब बात आती है कि बाल श्रम क्यों होता है। बाल श्रम केवल एक समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का परिणाम है। इसमें सबसे पहली बात आती है गरीबी की। श्रोता साथियों गरीबी बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। जब परिवार की आय कम होती है तो माता पिता बच्चों को भी कमाने के लिए भेज देते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे की मजदूरी से घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। जहाँ शिक्षा की सुविधाएं कम होती है या लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते वहाँ बाल श्रम अधिक देखने को मिलता है।
0: जी हाँ।
1: कई बच्चे स्कूल छोड़कर काम पर लग जाते हैं। अब बात करें बेरोजगारी की मनीषा, तो जब परिवार के बड़े सदस्यों को रोजगार नहीं मिलता तब बच्चों को कमाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई लोग आज भी बाल श्रम को सामान्य बात मानते हैं। वे ये नहीं समझते मनीषा कि यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। कुछ उद्योग और व्यवसाय कम मजदूरी देकर बच्चों से काम करवाना पसंद करते हैं। बच्चे विरोध नहीं कर पाते इसलिए उनका शोषण करना आसान समझा जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बाल श्रम बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें अशिक्षा की कमी के कारण ये कैसे बढ़ रहा है तो हम देखते हैं कि जब माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं तब वे शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाते।
1: बिल्कुल।
0: परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वे बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर लगा देते हैं। यही अगर बात करें कि सामाजिक असमानता की तो हम देखते हैं कि समाज में मौजूद असमानताएं और भेदभाव भी बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं।
1: जी जी।
0: गरीबी और पिछड़े वर्गों के बच्चे अधिकार इस समस्या का ज्यादा शिकार होते हैं। श्रोता साथियों कई ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता होती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है।
1: जी जी बिल्कुल मनीषा, हम यही अब बात करें बाल श्रम के दुष्परिणामों की तो श्रोता साथियों बाल श्रम का प्रभाव केवल बच्चों पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। शिक्षा से बच्चे वंचित हो जाते हैं, यानी कि जब बच्चे काम करते हैं तो स्कूल नहीं जा पाते, इससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। फैक्ट्रियों, खदानों और अन्य कठिन कार्यों में काम करने से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उन्हें चोट, बीमारी और कुपोषण जैसी समस्या हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: कम उम्र में मनीषा जिम्मेदारियों का बोझ बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। वे तनाव, भय और असुरक्षा महसूस करते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ बाल श्रमिकों को अक्सर कम मजदूरी मिलती है, उनसे अधिक काम लिया जाता है और कई बार उन्हें दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है।
0: जी हाँ।
1: जब बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो भविष्य में कुशल नागरिक नहीं बन पाएंगे, इससे देश की प्रगति भी प्रभावित होगी।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि बाल श्रम क्यों बढ़ रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम है, यही बात करें मनीषा श्रोता साथियों से कि बाल श्रम के बावजूद भी बच्चों को कौन कौन से ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो बच्चों को इस समस्या से बचा सकते हैं। श्रोता साथियों, हर बच्चे को मूल अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, खेलने और सीखने का अधिकार, शोषण से मुक्त रहने का अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं मनीषा कि भारत ने बाल श्रम रोकने के लिए अनेक कानून बनाए हैं। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी व्यवसाय में काम करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं है और सरकार द्वारा शिक्षा, पोषण और बाल संरक्षण से जुड़ी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि बच्चों को बेहतर अवसर मिल सके। फिर भी चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इसलिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि
0: बिल्कुल मनीषा, आप कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बाल श्रम को समाप्त करने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें क्या करना है श्रोता साथियों, तो हमें किसी भी बच्चे से मजदूरी नहीं करवानी है। बाल श्रम दिखाई दे तो संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए परिवारों को प्रेरित करना है, गरीब परिवारों की सहायता करनी है, साथ ही शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है, बच्चों के अधिकारों का सम्मान भी करना है। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कि शिक्षा शक्ति है जो बाल श्रम की जड़ों को कमजोर कर सकती है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका भविष्य बढ़ता है, कौशल विकसित होता है, बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं और गरीबी का जो चक्र है वो भी टूट जाता है। इसलिए हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हमारे लिए बहुत आवश्यक है ताकि बच्चे जो है वो बाल श्रम जैसी समस्याओं से दूर रह पाए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत में बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक समस्या बन रही है। हालांकि श्रोता साथियों, पिछले वर्षों में इसमें कमी आई है, फिर भी अंजलि जी हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में बच्चे मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए कानून बनाए हैं श्रोता साथियों, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो ये चल रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बाल श्रम को समाप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तब उन्हें ज्ञान, कौशल और बेहतर भविष्य प्रदान अवसर मिलते हैं अंजलि जी। साथ ही हम देखते हैं कि शिक्षा बच्चों के आत्मनिर्भर बनाती है, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, साथ ही शिक्षित बच्चे भविष्य के समाज और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक सामाजिक संकल्प का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों या आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब कोई बच्चा मजदूरी के कारण अपना बचपन खो देता है तब केवल उसका ही नहीं पूरे समाज का भविष्य कमजोर हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम बाल श्रम को केवल कानून का विषय न माने बल्कि नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखें। हर बच्चा सपने देखने, सीखने, खेलने और आगे बढ़ने का अधिकार रखता है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाला भारत ज्ञान, नवाचार और मानवीय मूल्यों से समृद्ध हो तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा मजदूरी न करे। इस विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस पर हम सभी यह संकल्प ले सकते हैं कि बच्चे के हाथ से मजदूरी का बोझ हटाकर उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का उज्जवल हम भविष्य दें, क्योंकि जब बच्चा सुरक्षित होगा तभी समाज समृद्ध होगा और राष्ट्र सशक्त बनेगा।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यह दिवस हमें यह समझाता है कि बाल श्रम केवल सामाजिक चुनौती नहीं है, यह दिवस बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए प्रेरणा भी है। श्रोता साथियों, इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम, संगठनों, नाटक और प्रतियोगिता और जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से अंजलि जी हम देखते हैं कि लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों और उन बच्चों के अधिकारों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। साथ ही श्रोता साथियों, बाल श्रम मुक्त समाज की आवश्यकता की बात करें तो हम देखते हैं कि एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए बाल श्रम मुक्त समाज की आवश्यकता है, जब प्रत्येक बच्चा शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा और सुरक्षित वातावरण में विकसित होगा, तभी देश वास्तविक प्रगति कर सकेगा। श्रोता साथियों, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा गरीबी या शोषण के कारण अपने बचपन से वंचित न रहे। प्रत्येक बच्चे को उसके सपने देखने और उन्हें पूरा करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो यही हमारे श्रोता साथियों से हम कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई केवल बच्चों को काम से छुड़वाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन्हें उनके अधिकार, सम्मान और संभावनाएं लौटाने का प्रयास है। जब कोई बच्चा विद्यालय की कक्षा में बैठता है, नई बातें सीखता है और अपने भविष्य के सपने बुनता है, तब वास्तव में समाज आगे बढ़ता है। इसके विपरीत श्रोता साथियों, जब कोई बच्चा मजबूरी से श्रम करता है तो उसकी प्रतिभा, रचनात्मकता और जीवन के अनगिनत अवसर सीमित हो जाते हैं। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपने आसपास के बच्चों के लिए किस प्रकार का वातावरण बनाकर रखें। क्या हम ऐसा समाज बना रहे हैं जहां हर बच्चे को सीखने, बढ़ने और सुरक्षित रहने का अवसर मिले, या फिर ऐसा समाज जहां परिस्थितियां उसे समय से पहले जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दे।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रश्न का उत्तर हमारे व्यवहार, हमारी संवेदनशीलता और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी में छिपा हुआ है। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए केवल सरकारों के प्रयास पर्याप्त नहीं है। परिवार, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं, उद्योग जगत और आम नागरिक सभी को इसमें भूमिका निभानी होगी। जब समाज यह स्वीकार कर लेगा कि किसी भी बच्चे की जगह कार्यस्थल नहीं बल्कि विद्यालय, खेल का मैदान है, तब परिवर्तन की जो गति है वो तेज होगी। जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक सहयोग के माध्यम से ही हम ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जहां कोई भी बच्चा मजबूरी में मजदूरी करने से बच जाएगा और अपना बचपन भी नहीं खोएगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि बाल श्रम समाज पर एक कलंक है जो बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और भविष्य को प्रभावित करता है। श्रोता साथियों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें यह संदेश देता है कि बच्चों का स्थान कार्य स्थलों पर नहीं है, बल्कि विद्यालयों, खेल के मैदानों और स्कूलों में है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए हमें कार्यक्रम चलाने होंगे। सरकार, समाज, विद्यालय, परिवार और प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी बच्चे को मजदूरी नहीं करने देंगे, उसे उसके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे और उन्हें स्कूल भेजेंगे और उन्हें सही शिक्षा देंगे।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर, अंजलि जी हम देखते हैं कि बाल श्रम की समस्या केवल लड़कों में ही नहीं दिखाई देती, हम देखते हैं कि ये लड़कियों को भी प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल।
0: अनेक बालिकाएं घरेलू काम काज, छोटे उद्योगों या खेतों में कार्य करती हैं, लेकिन उनका नाम अक्सर दिखाई नहीं देता। श्रोता साथियों इसके कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाती है। समाज को समझना होगा कि बेटियों को भी शिक्षा देनी है, सुरक्षा उतनी ही देनी है जितना कि हम अपने बेटों को देते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज के समय में तकनीकी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय, शैक्षणिक मोबाइल ऐप और बच्चों के सीखने के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि गरीब और दूरदराज क्षेत्रों में बच्चों तक तकनीकी संसाधन पहुंचाए जाए अंजलि जी, तो बाल श्रम को काफी हद तक कम किया जा सकता है और बच्चों को भी अच्छे तरीके से सहायता मिल सकती है।
1: जी हाँ मनीषा, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसके प्राकृतिक संसाधन, उद्योग या तकनीकी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उनके बच्चों में होती है।
0: जी हाँ,
1: बच्चों का बचपन सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल है तो देश का भविष्य भी मजबूत होता है। लेकिन जब बच्चे जीवन की शुरुआत ही संघर्ष, शोषण और मजबूरी के साथ करते हैं तो हम देखते हैं कि तब समाज की जो प्रगति है वो अधूरी रह जाती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए बाल श्रम का मुद्दा केवल बच्चों का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और सतत विकास का विषय है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, नए अवसर पैदा हो रहे हैं, शिक्षा के साधन बढ़ रहे हैं और विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। ऐसे समय में यह सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो जाता है कि समाज का कोई भी बच्चा इन अवसरों से वंचित न रहे।
0: जी हाँ,
1: हर बच्चे को अपनी क्षमता पहचानने, अपनी रुचियों को विकसित करने और अपने सपनों को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम बाल श्रम जैसी कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में गंभीरता से कार्य करें।
0: बिल्कुल,
1: हमें यह समझना होगा मनीषा कि किसी भी बच्चे की मदद केवल उसे आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, उसकी शिक्षा, सुरक्षा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को मजबूत बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब एक बच्चा शिक्षित होता है तो उसका पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार बाल श्रम का अंत केवल एक बच्चे का जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरे समाज में परिवर्तन की नींव रखता है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस हमें करुणा, जिम्मेदारी और जागरूकता का संदेश देता है। यह दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां बच्चों को अवसर मिले बाधाएं नहीं, प्रोत्साहन मिले शोषण नहीं और सपनों को उड़ान मिले बेड़ियां नहीं। जब समाज का प्रत्येक नागरिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा को अपना कर्तव्य मान लेगा तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हर बच्चा खुले आकाश के नीचे स्वतंत्रता, शिक्षा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेगा। यही एक उज्ज्वल, मानवीय और विकसित समाज की सच्ची पहचान होगी।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों को खेतों और पारिवारिक कार्यों में लगा दिया जाता है। श्रोता साथियों परिवार इसे सामान्य मानते हैं लेकिन इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। गाँव में जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा सुविधाओं के स्तर को अंजलि जी बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि मजदूरी करने वाले बच्चों को अक्सर पर्याप्त भोजन, आराम और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इनके कारण हम देखते हैं कि कुपोषण, कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं वो अंजलि जी बढ़ जाती हैं। स्वस्थ बचपन के बिना ही स्वस्थ समाज की कल्पना करना मुश्किल है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बाल श्रम केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है बल्कि मानवता के सामने एक बड़ी चुनौती है।
1: जी बिल्कुल,
0: जिस समाज में बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं वहाँ विकास अधूरा रह जाता है। बच्चों के हाथों में औजार नहीं साथियों बल्कि किताबें होनी चाहिए, उनके कंधों पर बोझ नहीं बल्कि सपनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो श्रोता साथियों आइए आज इस बाल श्रम निषेध दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हर बच्चे को उसके सपने पूरे करने में मदद करेंगे और हर बच्चे को आगे ले जाएंगे।
1: जी हाँ मनीषा, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस हमें केवल एक सामाजिक समस्या की याद नहीं दिलाता बल्कि यह भी सिखाता है कि किसी बच्चे के जीवन में किया गया छोटा सा सकारात्मक हस्तक्षेप भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है।
0: जी हाँ,
1: एक बच्चे को मजदूरी से निकालकर शिक्षा से जोड़ना, उसे सुरक्षा प्रदान करना या उसके परिवार को सहयोग देना केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान है।
0: जी
1: जिस
0: हाँ।
1: समाज में बच्चों को अवसर मिलते हैं वहाँ उम्मीदें जन्म लेती है और जहाँ उम्मीदें जीवित रहती है वहाँ विकास की राह कभी नहीं रुकती। यह भी सच है श्रोता साथियों के बाल श्रम का असर वर्षों तक दिखाई देता है। जो बच्चा शिक्षा से दूर रहता है वह अक्सर अपने जीवन में सीमित अवसरों का सामना करता है। इसके विपरीत जो बच्चा शिक्षा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्राप्त करता है वह अपने परिवार और समुदाय के लिए प्रेरणा बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर कदम केवल वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाले दशकों को भी प्रभावित करता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके युवा और बच्चे होते हैं। यदि बच्चे शिक्षा प्राप्त करके कुशल नागरिक बनते हैं तो देश की प्रगति भी तेजी से होती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, जब बच्चे कम उम्र में ही मजदूरी पर लग जाते हैं तो उनकी प्रतिभा है वो कम हो जाती है।
1: जी हाँ।
0: इसका प्रभाव केवल उनके जीवन पर ही नहीं पड़ता है बल्कि अंजलि जी हम देखते हैं कि पूरे राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। इसलिए श्रोता साथियों, बाल श्रम को समाप्त करना राष्ट्र के विकास की सबसे बड़ी जरूरत है।
1: जी हाँ मनीषा, तो जैसा कि कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कहना चाहेंगे कि हमें बच्चों को दया का पात्र नहीं बल्कि संभावनाओं से भरे व्यक्ति के रूप में देखना होगा।
1: बिल्कुल,
0: उनके भीतर अनगिनत प्रतिभाएं छिपी होती हैं मनीषा, जिन्हें सही वातावरण और अवसर मिलते ही वे समाज के सामने ला सकते हैं। कोई बच्चा भविष्य का शिक्षक हो सकता है, तो कोई वैज्ञानिक, तो कोई कलाकार, कोई किसान, तो कोई डॉक्टर, तो कोई सामाजिक परिवर्तन का वाहक।
1: हाँ।
0: लेकिन यह भी संभव है जब उसका बचपन सुरक्षित और सम्मानजनक होगा तभी वह अपने जीवन को अच्छे से जी पाएगा। आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं बल्कि ऐसी सामाजिक सोच विकसित करने की है जो हर बच्चे को समान अवसर देने में विश्वास रखे। जब हम यह स्वीकार कर लेंगे कि किसी भी बच्चे का बचपन बिकाऊ नहीं है और उसकी मेहनत से अधिक मूल्यवान उसकी शिक्षा और मुस्कान है, तब बालश्रम जैसी समस्या अपने आप कमजोर पड़ने लगेगी। श्रोता साथियों, हम ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां बच्चे के सपने की कीमत मजदूरी से नहीं आकी जाए बल्कि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। यही बच्चे के प्रति सच्चे संवेदनशीलता, मानवता और राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज हम जिन बच्चों को शिक्षा देंगे, सुरक्षा देंगे, वही कल समाज और राष्ट्र के नेतृत्व करेंगे। इसलिए बच्चों में निवेश करना वास्तव में देश के भविष्य में निवेश करना है। बाल श्रम मुक्त बचपन ही उज्जवल भारत की नींव रख सकता है। साथ ही श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बचपन जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल समय होता है। यह सीखने, सपने देखने और संभावनाओं को खोजने का समय होता है। यदि हम बच्चों को श्रम के बंधनों से मुक्त कर शिक्षा और अवसर प्रदान करेंगे तो वे अपनी क्षमताओं को पूर्ण विकास करेंगे। तो श्रोता साथियों, आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां कोई बच्चा मजदूरी ना करें, जहां हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, हाथों में पुस्तक हो और आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने हो। यही बाल श्रम निषेध दिवस का वास्तविक संदेश है साथियों।
0: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि जब इतिहास किसी समाज का मूल्यांकन करता है तो वह यह नहीं देखता कि उनके पास कितनी संपत्ति है बल्कि यह देखता है कि उनसे अपने सबसे कमजोर और सबसे निर्भर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार किया है। बच्चे समाज का वही वर्ग है जिसके पास अपनी आवाज उठाने की शक्ति कम होती है, इसलिए उनकी सुरक्षा और अधिकारों की जिम्मेदारी हम सभी पर होती है। यदि कोई बच्चा अपनी क्षमताओं, शिक्षा और खेलकूद से दूर होकर जीविका कमाने को मजबूर हो तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए चिंतन का विषय है। बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष का उद्देश्य केवल बच्चों को काम से दूर रखना नहीं बल्कि उन्हें ऐसा वातावरण देना जहाँ वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। बचपन जीवन का वह दौर है श्रोता साथियों जिसमें जिज्ञासा, सीखने की क्षमता, कल्पना शक्ति और आत्मविश्वास का निर्माण होता है। यदि यही समय कठिन श्रम और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाए तो व्यक्ति की अनेक संभावनाएं जो है वो जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाती है मनीषा। इसलिए बच्चों को अवसर देना वास्तव में भविष्य को अवसर देने जैसा है। एक जागरूक समाज वही है जो अपने बच्चों को समस्या नहीं बल्कि समाधान का आधार मानता हो। शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर किया गया निवेश किसी भी देश के लिए सबसे लाभकारी निवेश होता है। जब बच्चे सशक्त बनते हैं तो वे आगे चलकर अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र को भी सशक्त बनाते हैं। इस दृष्टि से बाल श्रम का उन्मूलन केवल सामाजिक सुधार नहीं बल्कि दीर्घकालिक विकास की अनिवार्य शर्त है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल,

0: और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
1: बिल्कुल, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार
0: साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार कर रही है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रातः 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम आपकी फरमाइश चलता है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं और अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। इस नंबर के जरिए आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। तो दोस्तों, 11 बज चुकी है, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है जन्नत, गीत के बोल है जरा सा दिल में। सुना जा रहे इस गीत को कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिका अली खान इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया ये हैं जमशेदपुर से। पसंद किया है इस गीत को तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास जी, श्रीमती करुणा श्रीवास जी, आयुष श्रीवास जी, विवेक श्रीवास जी, बीबी आयुषी श्रीवास, ग्राम कुर्बी बैलतरा छत्तीसगढ़ से है मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित, सोमो और मानस राज। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ही मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सारे सदस्य। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत के बोल हैं, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। आवाज़ दी इस गीत को किशोर कुमार साहब ने। फिल्म का नाम है कटी पतंग। सुनना चाह रहे इस गीत को शिंदी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर। पसंद किया है इस गीत को किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शिलादेवी शेंडे, सिद्धार्थ गोड़ा ने। राहुल नगर अमरावती से है सिद्धार्थ गोड़ा ने, अर्चना गोड़ा ने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। रजौरी जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से हैं उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और बघेल परिवार के सारे सदस्य। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, प्यार दीवाना होता है। आवाज़ दी इस गीत को किशोर कुमार साहब ने।

श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, और इस गीत को आवाज़ दी थी किशोर कुमार साहब ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई, ये फिल्म का नाम है गदर 2, गीत के बोल है चल तेरे इश्क में। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को कलानूर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। फरमाइश करता है दत्रेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौकेलाल वर्मा इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। जोन रोजी पर्ल विलीस जनकपुरी सरहानपुर से है ये। फरमाइश करता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से है ये। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं चल तेरे इश्क में, पड़ जाते हैं। आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथ ही जागृति भट्ट के साथ में।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल हैं आशाओं के सावन में। आवाज दी इस गीत को सुरेश वाड़कर और लता मंगेशकर जी ने। सुनना चाह रहे इस गीत को मित्रनगर बिरशहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से हैं आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। फरमाइश करता है इस गीत की दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। सहसपुर लोहार दनिया खुर्द जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हैं गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है श्रोता साथियों। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं आशाओं के सावन में।

0: साथियों, बहुत ही प्यारा संगीत सुना आशाओं के सावन में। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, तू है तो दिल धड़कता है। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही। सुना चाह रहे इस गीत को बाबा कुटीर रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान डुगू इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। गंजटुडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां शिफा सिमरन, मोहम्मद अल्फीज, शिवा शेख फरमाइश करता है इस गीत के। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं, पियोस सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, पबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू पसंद किया है इस गीत को। दिल्ली बिहारी कॉलोनी से वीणा मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचित खुराना और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। श्रोताओं, कोल सिटी बरकाना से हैं अफजाल दास, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल मलिक। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, तू है तो दिल धड़कता है। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही।
1: कौन सी फीलिंग?

दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल है, ये दुआ है मेरी रब से। फिल्म का नाम है सपने साजन के। इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक जी और कुमार सानू जी ने। सुनना चाह रहे इस गीत को बक्सर बिहार से शरफीदुन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू। डुमराव बिहार से है डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर और दानिश अंसारी। गोल बाजार बक्सर से है श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से है राज SD अंसारी और आसमा खातून अंसारी। फरमाइश करता है दोस्तों इस गीत की, ग्राम लसोड़िया, पता तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से है मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, बाबू अहद चाहत और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से है मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आबाद खान, मोहम्मद सोहान सैफी, लीपा मलिक। ग्राम महजवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से है शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा, नंदनी शर्मा। फरमाइश करता है जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं, ये दुआ है मेरी रब से।

श्रोताओं, अभी हमने सुना बहुत ही प्यारा सा गीत, तुझे आशिकों में मेरी आशिकी पसंद आए। फिल्म का नाम था सपने साजन के। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है। फिल्म का नाम है नसीब। सुनना चाह रहे इस गीत को कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगिल, मोरस जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजीत कुमार, आयुष जंगिल और नंदनी जंगिल। धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंगिल, शकुनी जंगिल, आरुषि ओशी का, आदित्य जंगिल और अंजलि जंगिल। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं, कश्मीर से हैं मिर्जाउद्दीन, पद्मा टॉकिश नेपानगर मध्य प्रदेश से है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। रघुवीर नगर से है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नयाब और लड्डू। फरमाइश करता है दोस्तों इस गीत के, जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। यह है लहू डडा जिला बागपत से। डॉक्टर के आर गणोजे, रत्नमाला गणोजे। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत की बोल है, जिंदगी इम्तिहान लेती है।

दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है आपकी कसम गीत की भूल है, करवटे बदलते रहे सारी रात। सुना जा रहे इस गीत को मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक फरमाइश करता है इस गीत की। गंज डुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिना फातिम, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हैं। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। मध्य प्रदेश से हैं जगदीश धाकर, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत की बोल है करवटे बदलते रहे हम, फिल्म का नाम है आपकी कसम।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, गीत की बोल है चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए। सुनना चाह रहे इस गीत को नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बीबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला नानकर, विशाल नवानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर, बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद, नेहा, दीपक, चेतन, दिलीप और दीक्षा कुश। ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से हैं ये। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है चाहे लाख तूफान आए।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरिया छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है दोस्ती, गीत के बोल हैं चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस गीत की फरमाइश करता है उत्तम कुमार भगेल, रुक्मणी भगेल, साहिल भारती जी भगेल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं अम्बाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गाजियाबाद से शिषपाल जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। डाबकी रोड अकोला से जुड़ना चाह रहे हैं शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है हकीकत, गीत के बोल हैं ओ जाने जा। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिर शेख, नाजिया नाशिर, शाहिद शेख, अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जुमेद मुजावर जी। इस गीत के अनुरोध करता है भेड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मिलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीपी कुतलेश जी। मलियाना सरधाना मेरठ से जुड़ना चाह रहे हैं अनिल जैन।

वीएम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, सरधाना मेरर से जुड़ रहे हैं आदि जैन, अंश जैन, भव्यजी जैन। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ जाने जा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकर रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से। फिल्म का नाम है धुंध, गीत के बोल हैं संसार की हर रेखा बस इतना फसाना है। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंडितपुर सिटी से। प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा जी घोड़की, धनुरी तेलीवाला से जुड़ रही हैं निसार सलमानी, नसा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजनंदा गांव से। बबलू शाहू, जामुन देवी शाहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या जी शाहू ऐसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। नितेश कुमार, देवगान, दुर्गा प्रसाद, पलारा, तनुजा और ईशान जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं संसार की हर शय। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है हीरो, गीत के बोल हैं तू मेरा जानू है। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी, राधा नामदेव जी और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आकोट सिंह, विनायक भेंडे, श्रीमती मंगला भेंडे, विजय शुभम भेंडे, पवन जरिए, सजीव जी। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, लाडली, निशा और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही तू मेरा जानू है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है दोस्त, गीत के बोल हैं कैसे जीते हैं भला। इस गीत की फरमाइश करते हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शानू, बब्बन मीनू, काना हरी प्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पथरोड से विजय अंबाटकर, सुनीता अंबाटकर, अक्षय अंबाटकर, राधिका अंबाटकर, ऋषिकेश जी अंबाटकर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर नृत्यम, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, प्रतिभा शर्मा, ईश्वरी शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा गुगलानी, सुनीता शर्मा, सुनीता जैन, सुनीता गहलोत, हरिपाल जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कैसे जीते हैं भला लोग। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत की फरमाइश करता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुना जा रही है कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रतिमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुना जा रही है अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक जी कीटे। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रही है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अस्तुपुरा जिला मऊ से। गीत के बोल हैं चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। इस गीत की फरमाइश करता है मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं श्री राम पोसी, डी अशोक कुम्भार, रविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पूनावाले से जुड़ रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शाइशा जी सोनवने। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

फिल्म का नाम है मोहरा। गीत की बोल है तो चीज बड़ी है मस्त। इस गीत की फरमाइश करता है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावली पुणे से जुड़ रहे हैं अजय सोनोनी, करिश्मा सोनोनी, अविका सोनोनी, शाइशा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन वर्मा, मास्टर समर राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ऐशिका, श्वेता जी वर्मा। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं शंकर, सुमन, दीपाली और कविता जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से बल्लू अप्पा और ज्योति जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आरुषि श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित, मोनू मानस जी राज। दिल्ली से जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश और योगेश जी। साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। जौनपुर से जुड़ रहे हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजात अबू समझी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं वासी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। खड़वा गेट कॉलोनी से जुड़ना चाह रहे हैं अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं यूपी से सूरज चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोध चौरासिया, सलोनी चौरासिया, योगेश काजगस जी। कानपुर से जुड़ रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीहू और दिया जी चौरासिया। आगरा से जुड़ रहे हैं श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमिन चौरासिया, अभिरजीत चौरासिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं छलोला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजयोगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। इस गीत के अनुरोध करता है शिवांगी नगर देशमुख सिंह, राजेश खोबरखेड़ी, शिवसागर खोबरखेड़ी, इंद्राताई खोबरखेड़ी। बुलडाणा से जुड़ना चाह रहे हैं दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े जी। अमरावती जुड़ रहे हैं सुनेन पवन भेड़े। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बीबी वेदई जोशी, बीबी हंसिका जी जोशी, कुम्हारी अंकिता जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं अब्दुल गफार डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती जेवंती जे केवट। साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मिका, सृष्टि बन्ने, आरिश शोरिया, दिनेश जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद मारवाड़ से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना जी देशमुख। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तो चीज बड़ी है मस्त। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 वार शुक्रवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:00। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:00। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद हम सुन सकेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:00। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोताओं, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज के संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए अब सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है। बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो। याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं श्रोता साथी, जो हमारे जीवन की सही दिशा और दशा दोनों बदल सकता है।
0: बिल्कुल,
1: विषय है सही सोच ही खुशी का पहला कदम है। श्रोताओं, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। कोई धन में खुशी ढूंढता है कशिश, कोई सफलता में, कोई रिश्तों में और कोई सुविधाओं में।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है श्रोता साथियों कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग तरह से क्यों प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुराता रहता है, जबकि दूसरा छोटी सी परेशानी में भी दुखी हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और इसका कारण है सोच, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। सही सोच हमें खुशी की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें तनाव, चिंता और निराशा की ओर धकेल देती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में आगे हमारे श्रोता साथियों से इसी विषय को लेकर हम ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना जरूरी है और कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों विषय बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं सही सोच ही खुशी का पहला कदम होती है। हम देखते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में लगा रहता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल।
0: कोई धन में खुशी ढूंढता है, कोई सफलता में, तो कोई प्रसिद्धि में, और कोई तो रिश्तों में भी खुशी को ढूंढने का प्रयास करता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन दोस्तों, यदि हम गहराई से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत तो बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच होती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति कठिनाई में भी अवसर खोज लेता है जबकि दूसरा अवसरों के बीच भी परेशान रहता है।
1: जी हाँ।
0: इसका कारण दोस्तों परिस्थितियां नहीं बल्कि सोच का अंतर होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए

0: कहा गया है कि सही सोच ही खुशी का पहला कदम है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि सही सोच का अर्थ केवल सकारात्मक बातें करना नहीं है। सही सोच का मतलब है परिस्थितियों को समझदारी से देखना, समस्याओं में अवसर खोजना और हर परिस्थिति में संतुलित निर्णय लेना।
0: बिल्कुल,
1: सही सोच वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो ये मानता है कि समस्या जीवन का हिस्सा है और उनका समाधान भी संभव है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम सही सोच विकसित करते हैं तब हम दूसरों की सफलता से जलते नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हैं। हम अपनी असफलताओं को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। श्रोताओं,
0: बिल्कुल,
1: और कहा भी गया है कि सोच अगर सही बनाएंगे तो जीवन में खुशियां हमें अपार मिलेगी।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ जब हमारी सोच सकारात्मक, संतुलित और रचनात्मक होती है तब जीवन की चुनौतियां भी हमें कमजोर नहीं कर पाती है। हम देखते हैं कि हम हर स्थिति में सीखने, आगे बढ़ने और मुस्कुराने का रास्ता खोज ही लेते हैं। और आज के समय में तो जागृति जी, युवाओं के सामने शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगिता, सामाजिक दबाव और भविष्य की कई सारी चिंताएं, चुनौतियां बनी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में सही सोच केवल खुशी का माध्यम ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी आधार बन जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज का इंसान अक्सर सोचता है कि यदि उसके पास अधिक पैसा है, बड़ा घर या महंगी गाड़ी होगी तो वो खुश हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इतिहास और वर्तमान दोनों बताते हैं श्रोता साथियों कि कई संपन्न लोग भी तनाव और चिंता में जीवन बिताते हैं, जबकि सीमित साधनों वाले लोग भी संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं।
0: जी हाँ,
1: खुशी वस्तु से नहीं बल्कि उन्हें देखने के नजरिए से आती है। यदि व्यक्ति हर समय कमी ही देखता रहेगा तो उसके पास कितना भी हो उसे कम ही लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यदि वो अपने पास मौजूद चीजों के प्रति कृतज्ञ रहेगा तो साधारण जीवन में भी खुशी महसूस करेगा।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी सोच श्रोता साथियों हमारे निर्णयों, व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती ही है। यदि मन में निराशा, डर और नकारात्मकता भरी होगी तो छोटे छोटे अवसर भी नहीं दिखाई देंगे।
1: जी हाँ,
0: वही जागृति जी, यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो कठिन रास्तों में भी हमें उम्मीद की रोशनी जरूर दिखाई देगी, क्योंकि सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: एक छात्र परीक्षा को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मानता है, जबकि दूसरा छात्र उसे डर और तनाव का कारण समझता है।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, ये दोनों ही परिस्थितियां समान है, लेकिन सोच अलग अलग है, इसलिए अनुभव भी अलग अलग है। सही सोच श्रोता साथियों हमें ये सिखाती है कि समस्याएं जीवन का अंत नहीं होती बल्कि सीखने और मजबूत बनने का अवसर होती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हर समय सोचता है कि उससे कुछ नहीं होगा, लोग उसके खिलाफ है, उसका भाग्य खराब है या दुनिया न्यायपूर्ण है, वो कभी भी सच्ची खुशी महसूस ही नहीं कर सकता।
0: जी,
1: नकारात्मक सोच एक ऐसे चश्मे की तरह है श्रोता साथी, जो हर चीज को धुंधला और बुरा दिखाती है। ऐसा व्यक्ति अवसरों में भी समस्या देखता है, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्याओं में भी अवसर ढूंढ लेता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए यदि खुश रहना है श्रोताओं तो सबसे पहले नकारात्मक सोच की जड़ों को पहचानना और उन्हें बदलना होगा।
0: जी हाँ,
1: कहा गया है कि नकारात्मकता जब छूटेगी तो खुशी अपने आप ही दस्तक देगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि सही सोच ही खुशी का पहला कदम है, तो आगे भी ये महत्वपूर्ण बातें जारी रहेंगी हमारी, लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हमारी बातें चल रही थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सही सोच ही खुशी का पहला कदम है।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने सही सोच क्या होती है, खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर पैदा होती है, साथ ही नकारात्मक सोच खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने की थी।
1: जी जी,
0: यही बात करते हैं कि कृतज्ञता सही सोच की पहचान है। जैसे कि अगर कृतज्ञता की बात करें कशिश, तो कृतज्ञता जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद महसूस करना होता है। जब हम सुबह उठकर अपने परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तब हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है।
1: बिल्कुल,
0: कृतज्ञ व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना जानता है। एक सुंदर सुबह, पक्षियों की आवाज, परिवार का साथ, मित्रों का प्रेम, ये सब खुशी के स्रोत हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। श्रोता साथियों, सही सोच हमें जीवन की इन अनमोल चीजों का महत्व समझाती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग खुशी को केवल मनोरंजन या पैसा उपलब्धियों से ही जोड़कर रखते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तविक खुशी उससे कहीं अधिक गहरी होती है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि वास्तविक खुशी वह अवस्था है जिसमें मन संतुष्ट, शांत और आशावान होता है। खुशी का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कोई समस्या ही न हो,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि खुशी का मतलब तो ये है कि समस्याओं के बीच भी मन में विश्वास और उम्मीद बनी रहे। जागृति जी, जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को समझदारी से स्वीकार करता है और उनका समाधान खोजने का प्रयास करता है, तब हम देखते हैं कि वह सच्ची खुशी का अनुभव अपने आप ही करने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: और दोस्तों सही सोच इसी खुशी तक पहुंचने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होती है। जागृति जी,
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है। परीक्षा में कम अंक आना, नौकरी न मिलना, व्यवसाय में नुकसान होना या किसी लक्ष्य तक न पहुँच पाना, ये सब जीवन का हिस्सा है। गलती तब होती है जब हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सही सोच हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक घटना है, व्यक्ति की क्षमता नहीं। हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती है। जो व्यक्ति असफलताओं से सीखता है वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है।
1: जी हाँ,
0: तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि खुशी का संबंध केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों से भी है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, क्षमा करना सीखते हैं, संवाद बनाए रखते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। गलतफहमियां अक्सर गलत सोच से जन्म लेती है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम हर बात को नकारात्मक रूप से समझेंगे तो रिश्तों में दूरी पड़ेगी, लेकिन यदि हम धैर्य और समझदारी से सोचेंगे तो रिश्तों में प्रेम और विश्वास पड़ेगा।
1: जी हाँ, आपने सही कहा। साथी दोस्तों, खुशी को पाने के लिए तुलना की आदत को भी छोड़ना होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया के दौर में तुलना की समस्या बहुत बढ़ गई है। जागृति जी, लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन ऐसे में हमें ये समझना चाहिए दोस्तों कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता देखकर प्रेरित होना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं की तुलना करना दुख और असंतोष को जन्म दे सकता है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में सही सोच हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी क्षमताओं और प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम जागृति जी अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वास्तविक खुशी हमारे करीब आती है।
0: बिल्कुल,
1: कई युवा ऐसे हैं जो एक या दो असफलताओं के बाद निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे ये सोचने लगते हैं कि अब उनके लिए कोई अवसर बचा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम युवा साथियों से कहना चाहेंगे कि साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि अधिकांश सफल लोगों ने अनेक असफलताओं का सामना किया है।
0: जी हाँ,
1: असफलता सफलता का विरोध नहीं करती, बल्कि उसका हिस्सा होती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम एक उदाहरण के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, दो किसान थे, दोनों की फसल एक ही वर्ष सूखे के कारण खराब हो गई।
1: बिल्कुल,
0: पहला किसान हर समय शिकायत करता रहता था, वो कहता था कि उसका भाग्य खराब है और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कशिश, जो दूसरा किसान था वो दुखी तो था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। उसने नई तकनीक सीखी, वर्षा जल संरक्षण किया और अगले वर्ष फिर मेहनत की।
1: जी हाँ,
0: कुछ वर्षों बाद वही किसान पूरे क्षेत्र का सफल किसान बन गया। जब लोगों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, परिस्थितियां दोनों के लिए समान थी, फर्क केवल सोच का था। तो श्रोता साथियों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है, और इस तरीके की शुरुआत हमारी सोच से होती है। यदि हम हर दिन अपनी सोच को थोड़ा बेहतर बनाएंगे, शिकायतों की जगह कृतज्ञता अपनाएंगे, नकारात्मकता की जगह आशा चुनेंगे और हार की जगह सीख को महत्व देंगे, तो खुशी स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि धन, पद, प्रसिद्धि खुशी की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन सही सोच अवश्य देती है।
1: बिल्कुल, युवा साथियों याद रखिए कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है।
0: बिल्कुल,
1: कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी चुनौतियां सामने आती है। ऐसे में परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होने वाली है।
0: जी हाँ,
1: जबकि हमारी जो सोच है वो हमेशा हमारे हाथ में होगी।
0: बिल्कुल,
1: यदि सोच सही हो जागृति जी तो अंधेरे में भी रास्ते दिखाई देते हैं, वहीं यदि सोच गलत हो तो उजाले में भी निराशा नजर आती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए युवा साथियों अपनी सोच को सकारात्मक, रचनात्मक और आशावादी बनाइए।
0: जी हाँ,
1: अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और हर परिस्थिति से सीखने का प्रयास कीजिए। याद रखिए साथियों, खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि सही सोच के साथ तय किया गया एक सुंदर सफर है।
0: बिल्कुल कशिश, तो जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो श्रोता साथियों, तो परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपनी सोच की ओर जरूर देखिएगा, क्योंकि सूरज उगने से पहले उजाला आसमान में नहीं मन में पैदा होता है।
1: बिल्कुल,
0: खुशी किसी दुकान में नहीं मिलती, न ही किसी सफलता के बाद अचानक मिलती है। खुशी उस पल में जन्म लेती श्रोता साथियों जब हम ये तय करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों हम सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे।
1: जी हाँ,
0: इसलिए याद रखिए, विचार बीज है, जीवन उनका फल है। यदि बीज अच्छे होंगे तो खुशियों का वृक्ष भी अवश्य खिलेगा।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि बातें ढेर सारी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनवाते हैं श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो युवा साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथ

0: जो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम समाज से जुड़े उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही समस्या की जो हमारे आसपास मौजूद तो है, लेकिन कई बार हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह समस्या है श्रोता साथियों, बाल श्रम। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है साथियों। यह वह उम्र है जब बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और उनके सपनों को उड़ान मिलनी चाहिए। लेकिन श्रोता साथियों, दुख की बात यह है कि आज भी अनेक बच्चे स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करने को मजबूर हैं। कोई चाय की दुकान पर काम कर रहा है, कोई खेतों में मेहनत कर रहा है, तो कोई कारखानों में अपने बचपन को खो रहा है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से बाल श्रम को लेकर हम आगे भी जानेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बाल श्रम को लेकर। श्रोता साथियों, बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर सामाजिक मुद्दा है। तो श्रोता साथियों, आइए इस विषय को समझने के लिए सुनते हैं दो महिलाओं के बीच का संवाद।
1: अरे सीमा बहन, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी?
2: नमस्ते राधा बहन, मैं स्कूल जा रही हूँ। वो आज गांव के बच्चों की पढ़ाई और बाल श्रम को लेकर एक बैठक वहाँ रखी गई है।
1: अच्छा, अरे इस बैठक में क्या जरूरी है ऐसा? गरीब परिवारों के बच्चे अगर थोड़ा काम कर लेते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
2: बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये सोच तो बदलने की जरूरत है ना बहन। इससे उनका बचपन और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं, और यही बात हमें समझने की जरूरत है।
1: लेकिन अगर बच्चा घर की मदद करेगा तो परिवार का खर्चा भी तो चल पाएगा ना सीमा बहन?
2: अरे राधा बहन, खर्च तो कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन आप सोचो कि अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो आगे चलकर अच्छी नौकरी या रोजगार भी तो प्राप्त कर सकता है। तब तो वह पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है।
1: बात तो तुम्हारी सही है सीमा, लेकिन कई परिवार मजबूर भी तो होते हैं ना?
2: हाँ, मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन समाधान बच्चों से मजदूरी करवाना नहीं है। सरकार ने शिक्षा के अधिकार का कानून भी तो बनाया है ताकि हर बच्चा स्कूल जा सके। कई योजनाएं भी चल रही हैं जिनसे गरीब परिवारों को सहायता मिलती है।
1: मैंने कई बार छोटे बच्चों को दुकानों और होटलों में काम करते देखा है, उन्हें देखकर दुख भी होता है थोड़ा सा।
2: अरे राधा बहन, जरा सोचो, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, नई बातें सीखते हैं, सपने देखते हैं, उसी उम्र में अगर उन्हें घंटों मेहनत करनी पड़े तो उनके मन और शरीर पर कितना बुरा असर पड़ सकता है।
1: हाँ, कई बच्चे थके हुए और उदास भी दिखाई देते हैं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा भी है।
2: हाँ, क्योंकि बाल श्रम बच्चों से केवल उनका समय नहीं छीनता, बल्कि उनका आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार भी छीन लेता है।
1: लेकिन समाज में लोग इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं सीमा बहन?
2: बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा मजदूरी करता दिख रहा है तो उसके परिवार को शिक्षा के महत्व के बारे में समझा सकते हैं, और इसी के आगे जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात तो ये है राधा बहन कि बच्चों को मजदूर नहीं बल्कि विद्यार्थी के रूप में देखने की सोच विकसित करनी होगी हम सभी को।
1: अब मुझे समझ आया सीमा बहन कि बाल श्रम केवल एक बच्चे की नहीं पूरे समाज की समस्या है।
2: बिल्कुल, जब एक बच्चा स्कूल से दूर होता है तो समाज एक भविष्य के शिक्षक, डॉक्टर, किसान, वैज्ञानिक और साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक को भी खो देता है।
1: सीमा बहन, आज आपने मेरी सोच बदल दी। मैं भी अपने आसपास के लोगों को समझाऊंगी कि बच्चों का स्थान काम की जगह नहीं है बल्कि स्कूल और खेल के मैदान में है।
2: हाँ, और यही जागरूकता सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। जब समाज और परिवार मिलकर बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देंगे ना बहन, तब बाल श्रम जैसी समस्या अपने आप ही कम होने लगेगी।
1: सही कहा, हर बच्चे को सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल बचपन मिलना चाहिए।
2: हाँ, और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है।
0: तो श्रोता साथियों, अभी हमने रेडियो नाटक के माध्यम से जाना कि बाल श्रम क्या है और ये हमारे बच्चों के बचपन को कैसे खराब कर रहा है। तो साथियों, बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि बचपन के अधिकारों का हनन है। एक बच्चा जब मजदूरी करता है तो वह केवल अपना वर्तमान नहीं खोता बल्कि उसका भविष्य भी सीमित हो जाता है। किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसके बच्चों की स्थिति से मापी जाती है। यदि श्रोता साथियों, बच्चे शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित हैं तो आज का भविष्य उज्जवल है। श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बाल श्रम को केवल एक सामाजिक समस्या मानकर चर्चा तक सीमित न रखें बल्कि इसके समाधान में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें, जरूरतमंद परिवारों की सहायता करें और ऐसी परिस्थितियां बनाने में योगदान दें जहां कोई भी बच्चा मजबूरी में मजदूरी करने के लिए विवश न हो। याद रखिए श्रोता साथियों, बच्चों के हाथों में औजार नहीं किताबें शोभा देती हैं। उनके कंधों पर बोझ नहीं सपने होने चाहिए। जब एक बच्चा शिक्षा पाएगा तभी हमारा समाज सच्चे अर्थों में विकसित और समृद्ध बनेगा। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें रही। हमने रेडियो नाटक के माध्यम से जाना कि बाल श्रम क्या है, यह हमारे बच्चों के बचपन को कैसे खराब कर रहा है और हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा की ओर ले जाना है। तो बातें तो मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में।

दोस्तों, नन्हे हाथों में कलम होनी थी, सपनों की कोई उड़ान होनी थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, बचपन में मजदूरी का बोझ लिया, कंधों पर बस्ता अच्छा लगता, विद्यालय का रास्ता सच्चा लगता, पर जीवन की कठिनाइयां ऐसी आई, खेलने की उम्र में जिम्मेदारियां छाई, कोई होटल में बर्तन धोता, कोई धूप में पसीना बहाता, मासूम आंखों के छोटे छोटे सपने समय से पहले ही टूट जाते अपने। बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, उम्मीदों के सुंदर दीप होते हैं, इनके अधिकार न कोई छीन सके, इनके सपनों को कोई न बीन सके। आओ मिलकर यह प्रण उठाएं, हर बच्चे को विद्यालय पहुंचाएं, न होगा बाल श्रम, न होगा अंधकार, शिक्षा से ही होगा जीवन साकार। बचपन हंसता गाता रहे, हर आंगन में उजियारा रहे, नन्हे हाथों में किताबें हो और आंखों में सुनहरे ख्वाब हो। तो श्रोता साथियों, इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो वे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। हो वे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आप कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
2: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो घणी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
5: तो हमरो बोनू, अड़ी सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है, फार्म भरो जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
0: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि बेटियों की सफलता बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। श्रोताओं जैसा कि किसी भी समाज की प्रगति का सही आंकलन इस बात से किया जाता है कि वहाँ महिला और बेटियों को कितना सम्मान अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त है। आज का भारत एक ऐसे परिवर्तन का साक्षी बन रहा है जहाँ बेटियाँ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा हो गई, विज्ञान हो गया, खेल, राजनीति, सेना, व्यापार, कला और तकनीक, ये सारे क्षेत्रों में बेटियों की सफलता साबित कर रही है कि वे किसी से कम नहीं है। उनकी उपलब्धियाँ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है बल्कि समाज में बढ़ते आत्मविश्वास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में इस विषय पर ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों से अवश्य रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत में हम हमारे दोस्तों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज हमारी बातें रहने वाली है बेटियों की सफलता बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि, एक समय था जब बेटियों को केवल घर की चार दीवारें तक सीमित रखने की सोच प्रचलित थी, लेकिन आज वही बेटियां अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास के बल पर नई ऊंचाइयों को छू रही है।
1: जी जी।
0: उनकी सफलता ये संदेश देती है कि अवसर मिलने पर बेटियां भी देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि बेटियां केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की शक्ति है। जब किसी बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो वह केवल अपना जीवन नहीं बदलती बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनती है।
0: बिल्कुल,
1: आज गाँव से लेकर शहरों तक अनेक बेटियां अपनी मेहनत और लगन से नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। वे यह साबित कर रही हैं जागृति जी कि सफलता का संबंध लिंग से नहीं बल्कि प्रतिभा, परिश्रम और अवसर से होता है।
0: बिल्कुल,
1: आत्मविश्वास श्रोता साथी वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का साहस देती है। जब बेटियों में परिवार का समर्थन, शिक्षा और सम्मान मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से भरपूर बेटी जागृति जी अपने निर्णय स्वयं लेने का साहस रखती है, चुनौतियों का सामना कर सकती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है और दूसरों की प्रेरणा बनती है। एक आत्मविश्वासी बेटी केवल अपने सपनों को पूरा नहीं करती बल्कि समाज में नई सोच को जन्म देती है।
0: बिल्कुल अंजलि, आत्मविश्वास वो शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसा कि अभी आपने कहा था, शिक्षा किसी भी व्यक्ति के विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: जी जी।
0: पिछले कुछ वर्षों में बेटियों की शिक्षा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज माता पिता अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उत्साहित हैं। शिक्षा ने बेटियों को ज्ञान, समझ और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है। इससे उनमें आत्मविश्वास का विकास हुआ है। शिक्षित बेटियां अपने अधिकारों को समझती है और समाज में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: वे न केवल स्वयं सशक्त बनती है बल्कि अपने परिवार और समाज को भी आगे बढ़ाती है। इसलिए कहा भी गया है कि शिक्षित बेटी आत्मविश्वासी बेटी, यही है विकास की सच्ची सीढ़। श्रोताओं, खेलों के क्षेत्रों में भी आज हम देखते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं।
1: जी जी।
0: उनकी उपलब्धियां लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं करती अंजलि बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास का भी परिचायक है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई बेटी खेल के मैदान में सफलता प्राप्त करती है तो ये साबित करती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता से समाज की पुरानी अवधारणाएं टूटती है और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज गाँव की बेटियां भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। पहले जहां अनेक लड़कियों की शिक्षा जल्दी रुक जाती थी, वहीं अब वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कई बेटियां स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं, कुछ कृषि में नए प्रयोग कर रही हैं तो कुछ छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। श्रोता साथियों, ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। जब गांव की बेटी आत्मनिर्भर बनती है जागृति जी, तो पूरे गांव की सोच बदलने लगती है। किसी भी बेटी की सफलता के पीछे परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब माता पिता अपनी बेटी पर विश्वास करते हैं, उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं और अपने सपनों का सम्मान करने देते हैं जागृति जी, तब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। परिवार को चाहिए श्रोता साथियों कि बेटियों को बेटों के तरह ही रखे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करे, शिक्षा के समान अवसर दे, उनकी रुचियों को समझे, सफलता के समय उनका मनोबल बढ़ाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखिए श्रोता साथियों कि एक प्रोत्साहन भरा शब्द भी किसी बेटी के जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही हैं बेटियों की शिक्षा को लेकर, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: जागृति जी, गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि बेटियां जो हैं वो आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ रही हैं, ग्रामीण बेटियों की बदलती तस्वीर के बारे में हमने जाना, परिवार की क्या भूमिका है ये हम जान पाए, यही बात करें समाज की बदलती सोच के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, समाज में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लोग अब समझने लगे हैं जागृति जी कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि अमूल्य संपत्ति है।
1: बिल्कुल।
0: आज कई परिवार अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा, खेल और व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वे अपने सपनों को साकार कर रही हैं। अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं जागृति जी, लेकिन जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से इनको दूर किया जा सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में बेटियां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। वे वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता और तकनीक विशेषज्ञ बनकर नई खोजों में योगदान दे रही है।
0: बिल्कुल।
1: आज अनेक बेटियां प्रशासनिक सेवाओं, राजनीतिक और नेतृत्व के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे बड़े बड़े निर्णय लेकर समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रही है।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, आज हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बेटियों की सफलता के पीछे परिवार की सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब परिवार बेटियों पर विश्वास करता है अंजलि, और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है, तब वे अपने सपनों को साकार कर पाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज अनेक परिवार ये समझ चुके हैं कि बेटियां भी परिवार का गौरव बढ़ा सकती हैं। यही कारण है कि बेटियों को शिक्षा, खेल, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
0: जी जी।
1: ये बदलाव समाज में बढ़ते आत्मविश्वास

0: विश्वास और समानता की भावना को दर्शाता है। बेटियों की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है श्रोताओं, सामाजिक परिवर्तन की पहचान है। ये दर्शाती है अंजलि कि समाज धीरे धीरे रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल रहा है
1: बिल्कुल,
0: और समान अवसरों की ओर बढ़ रहा है। जब बेटियां सफल होती हैं तो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनती हैं। उनकी उपलब्धियां ये संदेश देती है कि लिंग के आधार पर किसी भी क्षमता का आंकलन नहीं किया जा सकता। ये सोच समाज को और अधिक प्रगतिशील और न्यायपूर्ण बनाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सच्चा स्वराज वह है जहां व्यक्ति को सम्मान, अवसर और समान अधिकार प्राप्त हो। यदि समाज में बेटियां भय, भेदभाव और असमानता का सामना कर रही हैं तो स्वराज अधूरा माना जाएगा। लेकिन जब बेटियां आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं, निर्णय लेती हैं, नेतृत्व करती हैं, तब सच्चे स्वराज की भावना मजबूत होती है। बेटियों की सफलता हमें यह संदेश देती है श्रोता साथियों कि विकास तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग समान रूप से आगे बढ़े।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि बेटियों की सफलता केवल पुरस्कारों और उपलब्धियों की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत की तस्वीर है जहां आत्मविश्वास, समानता और अवसर मिलकर विकास का मार्ग तैयार करते हैं। जब कोई बेटी स्कूल की दहलीज पार करती है, जब वह अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करती है, जब वह समाज की पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है और सफलता प्राप्त करती है, तब वह केवल अपनी जीत नहीं लिखती बल्कि वह पूरे समाज के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देती है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बेटियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रही है। और जब बेटियां आत्मनिर्भर बनती है तो केवल अपने जीवन को नहीं बदलती बल्कि वो पूरे परिवार और समाज को सशक्त बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: बेटियों का आत्मविश्वास राष्ट्र के विकास को नई गति प्रदान करता है। श्रोताओं, हालांकि आज हम देखते हैं कि कई स्थानों पर बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और अवसरों से जुड़े चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है अंजलि, लेकिन इन समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों से संभव है। समाज को बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा और हम देखते हैं कि समाज अपना भी रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा भी दे रहे हैं, भेदभाव को समाप्त भी कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध करा रहा है समाज, क्योंकि जब हर बेटी को समान अवसर मिलेगा तब उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत होगा। इसलिए कहा भी गया है कि अवसर समान होंगे तब बेटियां भी आगे बढ़ेंगी।
1: बिल्कुल,
0: बेटियों की सफलता बढ़ते आत्मविश्वास का सबसे सुंदर और प्रेरणादायक प्रतीक है। उनकी उपलब्धियां सिद्ध करती है कि यदि अवसर, शिक्षा और प्रोत्साहन मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है। वे केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाती है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बेटियों पर विश्वास करें, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दें और उनके सपनों को सम्मान दें। जब हर बेटी आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी तब हमारा समाज और राष्ट्र और अधिक मजबूत, समृद्ध तथा प्रगतिशील बनेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज समय बदल रहा है और इस बदलाव की सबसे सुंदर तस्वीर हमारी बेटियों के रूप में दिखाई दे रही है। वे शिक्षा के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रही हैं, खेल के मैदानों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं, खेती किसानी से लेकर व्यापार तक अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। श्रोता साथियों, सामाजिक नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया है जागृति जी, बल्कि इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, परिवार का विश्वास, शिक्षकों का मार्गदर्शन और स्वयं बेटियों की अथक मेहनत शामिल होती है। इसलिए कह सकते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बेटियों को दया या सहानुभूति की दृष्टि से नहीं बल्कि सामर्थ्य और संभावनाओं की दृष्टि से देखें, उन्हें अवसर दें, प्रोत्साहन दें, उनकी बात सुने और उनके निर्णयों का सम्मान करें। जब समाज बेटियों पर विश्वास करना सीख जाता है तब बेटियां स्वयं पर और अधिक विश्वास करने लगती है और यही विश्वास जागृति जी उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और यही आत्मविश्वास देश की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा।
0: बिल्कुल, क्योंकि बेटी कोई बोझ नहीं बल्कि संभावनाओं का अथाह सागर है। उनके सपनों को पंख दीजिए श्रोता साथियों, उनके आत्मविश्वास को शक्ति दीजिए और उनकी मेहनत का सम्मान कीजिए। जिस दिन हर बेटी निर्भय होकर अपने सपनों की उड़ान भर सकेगी उस दिन भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए बेटियों की सफलता केवल उनकी जीत नहीं होती, वो पूरे समाज के आत्मविश्वास की जीत होती है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें रही, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ
2: कशिश और मनीषा, आज हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम में बातचीत का विषय है खीरा और शरीर में पानी की पूर्ति को लेकर।
1: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं कि गर्मी का मौसम आते ही हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की।
1: जी हाँ,
2: तेज धूप, पसीना, बढ़ता तापमान शरीर से पानी की मात्रा को कम कर देता है। ऐसे में यदि हम पानी और पौष्टिक आहार न लें तो थकान, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी जैसी समस्याएं होने लगती है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ दिए हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: खीरा उनमें से ही एक है। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि खीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये शरीर में पानी की पूर्ति कैसे करता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करने का दस्तूर है कार्यक्रम का।
2: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
0: बिल्कुल। जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बताया ही था कि आज हम बात करने वाले हैं खीरा और शरीर में पानी की कमी को कैसे पूरा करें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी और कशिश, हम देखते हैं कि मानव शरीर का लगभग 60-70% भाग पानी से बना होता है। शरीर के सभी अंगों को, प्रणालियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में पसीने के माध्यम से शरीर से अधिक मात्रा में पानी निकल जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी यानी कि श्रोता साथियों डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थों का सेवन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जो शरीर के पानी की पूर्ति के साथ साथ अंजलि जी हमारे शरीर में पोषक तत्व भी प्रदान करता है। खीरा ऐसा ही श्रोता साथियों एक प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है।
2: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि खीरा एक ऐसी सब्जी है जिसमें लगभग 95% तक पानी पाया जाता है। यही कारण है कि इसे गर्मियों का सबसे अच्छा आहार माना जाता है।
1: बिल्कुल,
2: जब हम खीरा खाते हैं तो यह केवल पेट नहीं भरता बल्कि शरीर को आवश्यक जल भी प्रदान करता है। आजकल लोग कई तरह के ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन उनमें अक्सर अधिक चीनी, कृत्रिम तत्व होते हैं। इसके विपरीत खीरा प्राकृतिक, सस्ता और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि खीरा केवल प्यास बुझाने का कार्य नहीं करता, बल्कि ये हमारे शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और हमें अनेक बीमारियों से बचाने में भी सहायता करता है।
0: जी बिल्कुल
1: अंजलि जी और मनीषा, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होने वाला खीरा स्वास्थ्य का एक सस्ता और प्रभावी साधन है। हम कह सकते हैं कि खीरा एक हरी सब्जी है जो बेल पर उगती है। श्रोता साथियों, भारत में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और गर्मियों में खीरे की मांग सबसे अधिक रहती है, क्योंकि यह जो चीज है यह शरीर को ठंडक और ताजगी दोनों प्रदान करती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ अगर बात करें कि शरीर में पानी का क्या महत्व है, तो हम देखते हैं कि पानी मानव जीवन का आधार है। शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा होने से हमारे शरीर के कई अंग है जो सही ढंग से काम करते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, पानी शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है।

0: गर्मी में पसीने के माध्यम से शरीर से अतिरिक्त ताप बाहर निकल जाता है साथियों।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हम देखते हैं कि पानी शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों पानी भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होता है।
2: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले लोगों को तेज धूप में कई घंटों बिताने पड़ते हैं।
0: बिल्कुल।
2: ऐसे में शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलता है। यदि खेत पर जाते समय साथ में खीरा रखा जाए और बीच बीच में खाया जाए तो ये शरीर को ठंडक ऊर्जा दोनों देता है।
0: बिल्कुल।
2: प्राकृतिक और सस्ता उपाय है श्रोता साथियों, जो महंगे पेय पदार्थों की आवश्यकता को कम करता है।
0: बिल्कुल।
2: यही बात करें खीरे के स्वास्थ्य लाभ की तो श्रोता साथियों, खीरे में पानी और रेशे दोनों होते हैं। इससे भोजन आसानी से पचता है और कब्ज की समस्या कम होती है।
0: जी हाँ,
2: खीरे में कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए जो लोग अपना वजन नियंत्रित रखना चाहते हैं उनके लिए खीरा एक अच्छा विकल्प है।
0: बिल्कुल।
2: शरीर में पर्याप्त पानी होने से त्वचा स्वस्थ चमकदार बनी रहती है। खीरा त्वचा को प्राकृतिक नमी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल।
2: गर्मियों में शरीर के तापमान को संतुलित रखने में खीरा मदद करता है। यही कारण है कि इसे गर्मी के मौसम में विशेष रूप से खाने की सलाह दी जाती है।
0: बिल्कुल।
2: खीरे में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है श्रोता साथियों, जिससे हृदय को भी लाभ मिलता है।
3: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं हम।
2: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि खीरे के क्या स्वास्थ्य लाभ है और किस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य को ढेर सारे लाभ पहुंचाता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही बात करें तो खीरे को हमें अच्छी तरह धोकर खाना है। सलाद के रूप में भोजन के साथ हम इसे शामिल कर सकते हैं, दही के साथ रायता बनाकर खा सकते हैं, नींबू और थोड़ा सा काला नमक डालकर खाया जा सकता है।
1: जी हाँ,
0: बच्चों के टिफिन में भी खीरे के टुकड़े दिए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत देर तक कटे हुए खीरे को खुला न रखें, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व खत्म हो सकते हैं।
2: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि खीरा प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, क्योंकि श्रोता साथियों, इसमें मौजूद लगभग 95% पानी शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: जी,
2: इसके साथ ही श्रोता साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, त्वचा को निखारता है और वजन को नियंत्रित रखने में भी सहायता करता है, साथ ही शरीर को ठंडक प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन का सरल मंत्र श्रोता साथियों हम सभी को अपनाना चाहिए और गर्मी के दिनों में खीरा हमें नियमित रूप से खाना चाहिए।
3: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में लोग कोल्ड ड्रिंक और कृत्रिम पेयों का अधिक सेवन करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथियों, इसके स्थान पर खीरा, तरबूज, खरबूजा और अन्य प्राकृतिक जल युक्त खाद्य पदार्थ अपनाने से हमारा शरीर भी ठीक रहता है।
2: बिल्कुल,
3: विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को खीरे के लाभों के बारे में जानकारी भी दी जानी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि स्वस्थ जीवन के लिए हमेशा महंगे खाद्य पदार्थों की जरूरत नहीं होती है। कई बार कशिश, हमारे आसपास उपलब्ध साधारण चीजें ही सबसे अधिक लाभ पहुंचाती है।
2: बिल्कुल,
0: खीरा इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति ने हमारी जरूरतों का समाधान पहले से ही तैयार कर रखा है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है।
2: बिल्कुल,
0: आज जब बढ़ती गर्मी और बदलती जलवायु हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, तब खीरा केवल एक सब्जी नहीं बल्कि स्वास्थ्य का एक सरल साथी बन जाता है।
2: जी हाँ,
0: हमें याद दिलाता है कि शरीर की देखभाल छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। भोजन की थाली में शामिल एक खीरा हमें ताजगी, संतुलन और स्वास्थ्य का उपहार दे सकता है।
2: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि खीरे में मौजूद पानी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल,
2: इससे हमारा शरीर दोस्तों हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। साथ ही देखते हैं कि खीरे में बीटा कैरोटीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं।
0: बिल्कुल जी हाँ,
2: जो हमारी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं श्रोता साथियों। ऐसे में श्रोता साथियों, अगर हम अपनी आंखों पर खीरे के टुकड़े रखते हैं तो इससे हमारी आंखों को ठंडक और आराम दोनों मिलता है।
3: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि खीरा प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो शरीर में पानी की पूर्ति करने के साथ साथ अनेक स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है।
2: बिल्कुल,
3: इसमें प्रचुर मात्रा में पानी, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। विशेष रूप से श्रोता साथियों, गर्मी के मौसम में खीरे का नियमित सेवन डिहाइड्रेशन से बचाव, शरीर को ठंडक पहुँचाने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी उपयोगी है।
0: बिल्कुल,
3: इसीलिए अंजलि जी और कशिश, प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में खीरे को शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर में पानी का संतुलन बना रहे और स्वस्थ जीवन का आनंद भी ले सके।
0: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर स्वास्थ्य की बड़ी समस्याओं के समाधान बड़े उपायों में खोजते हैं, जबकि कई बार उनके उत्तर हमारे खेतों, बगीचों, रसोई में ही मौजूद होते हैं। खीरा भी ऐसा ही एक प्राकृतिक उपहार है, जो हमें समझाता है कि स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के करीब रहना कितना जरूरी है।
2: बिल्कुल,
0: आज के समय में जब हम कई अलग पेय पदार्थों और त्वरित समाधानों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तब हमें पारंपरिक और प्राकृतिक खान पान की ओर लौटने की आवश्यकता है। खीरा केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर को संतुलित रखने, मौसम के प्रभावों से बचाने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का एक सरल माध्यम है।
2: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इस मौसम में अपने भोजन के रंग बिरंगे और पौष्टिक विकल्पों से इन सारी चीजों को आप सजाइए, प्रकृति के उपहारों का सम्मान कीजिए, स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानिए। याद रखिए कि स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।
2: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
3: बिल्कुल,
2: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
3: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत और गीत संगीत आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल हाँ।
0: तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी पे लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
3: नमस्कार।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

0: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर, हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में, तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।